हरि जगत जगतारे भजन करो, हरि जगत जगतारे भजन करो, हरि जगत।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं।

0: जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर महिला किसान।
0: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों में मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरो भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरो भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी बता कहाँ बात है?
0: कहाँ बात है लालाजू, आप तो बड़े आराम से बोल रहे हैं।
1: नहीं भाजी, अब तो नेक आराम से बोले सो भाई बात।
0: का कह रहे हैं, नेक कठिया से बोलो सो भाई बात।
1: अरे भाजी तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लेंगे, भाजी से बैसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू मैं जाके भी आई थी कि नेक तुम मेरे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू नेक तो।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो कहते हारे कि हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजू मैं कह रही तो समझ लो जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भाजी अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ लीजिए, आखने मुझे जरूरी काम है, वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता नहीं बता दे तो।
0: कहा कह रहे लालाजू नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा भाजी कि ऐसी क्या बात है, इतनी बता दे हारे जावे की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सी बता दूं मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आत होंगी लेकिन इनसे का कोती मुझे कछु फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है वो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आत हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा नाम क्या है।
0: अरे लालाजू फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेते होंगी, तुम्हें कछु नहीं आउट का?
1: अरे आउट तो है नहीं लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
0: अच्छा मैं तुम्हारे चलो मैं तुम्हारी खेती देखी आज तुम्हारी कैसी हैगी।
1: हाँ मैं देखे हम तो दवाई देती है अपनी ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे तो
0: चलो चलो तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे फिर मैं अपनी देखो।
1: हाँ तो देख भाजी देख जा दीदी आसूगी अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़े जाने तो खेती करनी तो जिनमें देखो जो आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई जे ही देती है तो जो दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लाला जी मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं पढ़े भी जाने आते ही।
0: हाँ।
1: पढ़े भी जाने तो खेती भी करनी है संगे संगे, देखो अब किसानी को गाँव वाले को काम है तो सब करनी है आते ही।
0: हाँ वो तो ये नहीं की लाला जी मैं जा कह रही तुम कहा डाल रहा दिन में देखो तुझे भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो, और दुखन में आने से लग रहा है कहा डाल रहा तुम्हें।
1: अरे भौजी दवाई तो मैंने मुल्कन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू मैं तो जहाँ से आई थी देखन मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जही बहाने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी क्या तो ऐसी बातें कर रही तुमने घर पर नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया तो तुम यानी क्या करा था मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजी तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, ये तो जबकि देसी दवाई इनको इस्तेमाल करे थे मैं तो बड़े वास आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उमदा हो जाए का पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आते हुए।
1: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय में दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिसिंगन में दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच तो
0: रासायनिक
1: फिर
0: बाकी तो
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोको हो जाए।
1: भौजी क्या तो ऐसी बात कर रहे जैसे तो अपने घर

0: बनाते हो दवाई?
1: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ मामे, कहाँ सके वो
0: कहाँ घरे बना।
1: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घरे बनाऊ तो और अपनी बैगन में वो चैंगन सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत हूँ।
0: कैसे काय को मस्करी कर रही हो जी?
1: कहाँ कह लाला जी काय को मस्करी कर रही? मस्करी दिखा रही।
0: और कई तरह के घरे बना दवाई बनाओ हसी के लेगा?
1: हाँ लाला जी मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते हैं रासायनिक दवाई से मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ।
0: अब तो वही चला ही नहीं आते यार, देखो
2: कैसे देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
1: ना ये को कीड़ा ला वो कीड़ा के ना वो जाना वो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अब तो चला ही नहीं आए तो हारे।
1: चलो देखो अब देखो लाला जी जो तो लगो मे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
0: वो भोजी तेरी फसल तो सांसों देख भी ला थेगी।
1: कहा कह रहे भोजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
0: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
1: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जे लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो घरे बना था अपनी सब
0: लेकिन भोजी जी टपक जाएंगे मटका धरे जे खाएगी धरे चार पाँच।
1: कहा कह रहे लाला जी टपज्जा में लोटा धरे?
0: लोटा नहीं रे मटका धरे टपज्जा में।
1: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
0: मटका खाद?
1: हाओ
0: बाकी बनाता
1: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है मैं अपनी सब देसी खाद डालता हूँ उनमें इसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वो हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
0: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा
0: लेकिन मैंने जैसू जी नहीं है कि खुद बना सका।
1: अरे वो तो है ही बना सकते हैंगे तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
0: अब तो भौजी मैं तुम्हें जरूर सीख भी हूँ जो दवाई बना।
1: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है। यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है। कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसे तो थोड़ी ना बढ़ेगी। कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
3: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
3: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
3: हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
3: अपने हिसाब से जे है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
3: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
4: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
4: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोषण रहता है, खाद मतलब गोबर खाद।
5: अच्छा,
4: इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
5: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
4: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का जो ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है। फिर
5: अगर जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
4: जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला आय,
5: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
4: मतलब ऐसे है की जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़ते हो अपन,
5: अच्छा
4: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया टुकड़ी चलेगी उसकी।
5: धन्यवाद।
6: अच्छा
5: ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
6: हमें पता नहीं है सर।
5: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
6: नहीं है जानकारी।
5: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
6: अब जी हमें पता नहीं है सर।
5: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
7: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
8: जीवन भर सुख

पर्यावरण को शुद्ध बनावे सुलावई अरे लावई हाँ लावई लावे हमें देती जा जीव के खेती जीवन भर

खुशहाल बनो रे अपनो देश, खुशहाल बनो रे अपनो देश। सो करो सो करो आ करो सब जे बेके।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे यहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सके। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से। आप देखिए, ये पद्धति का सेट है तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात करें और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है आपके नजर से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा है खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु है, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है लेकिन वो धीरे धीरे

0: शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
2: जी, इसके अनेक लाभ हैं, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
1: जी,
2: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
1: जी,
2: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
0: होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा, और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा, और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने एक और जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हां, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
4: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को, और साथियों अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों, और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
3: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207449। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है, और श्रोताओं पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था, और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है, तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
3: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
5: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनवे वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम पहुंच जावे भैया। और आशा कर रहे थे कि अपने सब श्रोता भैया बहन अच्छी तरह से होंगे और ये मौसम में ये घाम से और ये गर्मी से अपनो बचाव अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अब देखो साथियों, जितने बचाव की बात आत हैगी, जितने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की बात आत हैगी, तो अपन समझ जाते हैंगे कि अपने बीच में अपने साथियों के बीच में कौन सो कार्यक्रम आगा हुई है। तो आप समझ गए हुई हो कार्यक्रम अपनो है वो डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम में साथियों अपन और अपने स्वास्थ्य संबंधी चर्चा को करत हैंगे और जानत हैंगे कि अपने शरीर को ठीक रखने के लाने, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लाने अपन को काका उपाय करें चाहिए, की तरह से अपन को रहें चाहिए, कैसे अपनी देखभाल करें चाहिए, साफ सफाई को कैसे ध्यान रखें चाहिए, साफ सफाई को का महत्व होते है वो अपने शरीर के लाने। तो इन सब बातन को जानवे के लाने अपन और ई कार्यक्रम को अपने साथियों के बीच में लेके आते हैंगे और यही विषय पे चर्चा करते हैंगे। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपको आज के कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। आपको बता देवे के पहला जो कार्यक्रम यानी कि पिछली बार जो कार्यक्रम अपन और ने सुनो हतो रेडियो के माध्यम से डॉक्टर की सलाह, उमे अपन और ने जानो हतो कि अपन और लू से बचबे के लाने का उपाय कर सकत हेंगे। और जब बात अपन और ने कही हती के अगले कार्यक्रम में अपन और डॉक्टर की सलाह भी लेंगे ई विषय को लेके, तो पिछली बार तो हमने और मनीष जी ने मिलके दो जन ने लू से बचबे के उपाय बताए थे आपको और साथ ही में लक्षण भी बताए थे कैसे अपनो बचाव कर सकत हेंगे। ई के बारे में भी चर्चा बहुत सारी अपन और ने करी हती और आपने सब साथियों ने सुनी भी हती। लेकिन साथियों आज हम आपको डॉक्टर विनोद यादव जी से बातचीत सुनवावे वाले हेंगे कि की तरह से अपने श्रोता साथी ई मौसम को देखत भय, लू लपट को देखत भय, कैसे अपनो ध्यान रखे। काहे कि देखो घर से बाहर जब भी निकलत ना तो ऐसो लग रहा हो कि जैसे ऊपर से बिल्कुल आग बरस रही हो। कछु ना पूछो आज तो हम सही में हमें ऐसा लग रहा हो जब बाहर निकले ऑफिस से, देखो बाहर निकल के हमने तो बिल्कुल जा लग रही कि अपने जो किसान साथी हेंगे और जो मजदूर भाई हेंगे अपने, उनको ये मौसम में का हाल हो रहा हुई है। तो देखो साथियों हम अब आपसे ज्यादा तो कछु नहीं कह सकते हेंगे, काहे के काम अपन औरन को जो होते है वो तो अपन होकर नहीं आए है वो, लेकिन वो काम के संगे संगे अपन को अपनी सेहत को भी ध्यान रखने आए। काहे के अगर सेहत ना हुई है तो काम करवे को का फायदा है वो अपन को, है कि नहीं? तो ऐसे जब भी अपने श्रोता साथी घर से बाहर जावे यानी के मजदूरी के लाने जावे या खेत पे अपने साथी जावे, तो बढ़िया पहले तो अपनी पेट पूजा कर लीवे। काहे के डॉक्टर साहब ने अपन को बताई हैगी कि खाली पेट लपट लगवे के चांस ज्यादा रहेंगे। और जो अपने साथी खेत पे जा रहे हेंगे तो तौलिया अच्छी तरह से मुड़ी में बांध लेवे ताकि आपको घाम और लपट ना लगवे। और देखो हमने पहले भी आपसे कही थी कि छाता को उपयोग भी आप लोग कर सकत होगे। छाता को उपयोग केवल यही के लाने नहीं है कि आप बारिश के मौसम में जो है उको उपयोग करो, लेकिन आप धूप से बचबे के लाने भी उको उपयोग कर सकत होगी। कह के घाम बहुत ज्यादा पड़ रहा होगा साथियों, सो ऐसे में अपन को जो जो चीजें ऐसी लगवे कि जिसे अपन बच सकत हेंगे, अपनी धूप को बचा सकत हेंगे, अपने शरीर को भी सब उपाय अपन और कर सकत हेंगे। तो देखो साथियों इन्हीं सब बातन के संगे आज हम आपको डॉक्टर विनोद यादव जी से मिलवावे वाले हेंगे, उनकी चर्चा को सुनवावे वाले हेंगे कि ये विषय में उनको का के वो है। तो अपन डॉक्टर विनोद जी से मिलत हेंगे, लेकिन उनसे मिलवे के पहले अपन ते एक छोटे सी गीत के संगे मनोरंजन कर लेते हेंगे। काहे के कार्यक्रम में जब तक मनोरंजन ना हुई तब तक अपने कार्यक्रम को आनंद ही नहीं आउते। तो पहले अपन श्रोता साथियों ये सुनत हेंगे एक बढ़िया से लोकगीत को जिखो गा रहे हेंगे रामनाथ अहिरवार जी। तो आओ सुनत हेंगे गीत को, गीत के बाद फिर से हाजिर हुई है आपके कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में।

0: रामनाथ अहिरवार जी की आवाज में अपन औरन ने अब एक बढ़िया सी लोकगीत को सुन लो है गो साथियों, और अपनो कार्यक्रम चल रहा है गो डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम में साथियों अपन आगे बढ़त हैंगे और आपको डॉक्टर विनोद यादव जी की वार्तालाप को सुनवात हैंगे जो फोन पे अपने संगे हैंगे, और लू लपट से बचबे के लाने बे तरीका अपन को बता रहे हैं। सो अपन और सब जने ध्यान लगा के इनके बात को सुनबे।
1: सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
2: डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ, झांसी मेडिकल कॉलेज से।
1: जी सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज का जो हमारा विषय है कि लू लगने के क्या क्या कारण होते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे सर कि आखिरकार लू लगने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले
2: जी जी, तो लू लगने के कारण सबसे पहले हमें धूप में ज्यादा तेज धूप में नहीं निकलना चाहिए, और उसके बचाव के लिए हमें हल्के सफेद कपड़े और हल्के कलर में पहनना चाहिए। जैसे कि घरेलू उपाय जैसे आम का पना पीना चाहिए, बाहर निकलने पर साथ में पानी की बोतल लेकर के चलना चाहिए, बेल व नींबू का पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो सके।
1: जी बिल्कुल, यानी कि जब भी घर से बाहर हम निकल रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल
2: लेकर के चलना चाहिए। संभव हो तो गर्मी में सफेद कलर के, ज्यादातर सफेद कलर के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में तचन ना हो।
1: अच्छा, यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद अगर भले ही नहीं मिल रहे लेकिन हल्के रंग के जो होते हैं उन्हीं को पहनना चाहिए।
2: हाँ जी
1: जी,
2: धूप में निकलने से पहले
1: जी
2: शरीर में फुल कपड़े पहनना चाहिए, फुल कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर पूरा कपड़ों से ढक जाए।
1: जी जी,
2: उससे धूप से बचाव होता है जिससे कि हम लू से बच सकते हैं। दिन में खाली पेट बाहर ही निकलना चाहिए, धूप में कभी खाली कुछ ना कुछ खा करके ही बाहर निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए।
1: जी सर, इससे भी क्या लू लगने के चांस रहते हैं, जैसे आपने कहा खाली पेट नहीं निकलना चाहिए?
2: जब हम खाली पेट निकलते हैं लू में और हमें तेज तपन धूप पड़ती है तो हमारा शरीर से पानी निकलने लगता है, मतलब पसीने जो अपना आता है तो पानी की कमी हो जाती है
1: जी,
2: उसकी वजह से लू लग जाती है और थकान महसूस होने लगती है ज्यादा चलने पर, ये लू का कारण बन जाती
1: है। जी सर, ये लक्षण होते हैं, अगर किसी साथी को लू लग जाती है तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते, कैसे पता करें कि हमें लू लपट लग गई है?
2: लू लगने में हमें हल्का हल्का मुंह को सूखना, पानी प्यास ज्यादा लगना बार बार, कभी कभी लूज मौसम भी हो जाते हैं, ऐसे कई प्रकार होते हैं, कई कारण होते हैं लू लगने के।
1: जी,
2: गर्मी में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, ज्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए। गर्मी में ग्लूकोज पीना चाहिए, थोड़ा बहुत एक बोतल में एक ग्लूकोज घोल करके दिन में जितने बार पानी पीते हैं अपने बचाव के लिए ग्लूकोज भी पी सकते हैं।
1: जी, अगर सर कोई मार्केट वाला ग्लूकोज नहीं ला पाता है तो क्या घर में कोई ऐसा ग्लूकोज बनाने का उपाय है?
2: हाँ जी, जैसे धनिया है, धनिया को हम पानी में भिगोते हैं, गीला कर लेते हैं धनिया को, धनिया को महीन पीस करके उसको हम छानते हैं कपड़े से, उसमें थोड़ा चीनी मिलाते हैं, चीनी मिला करके उसको हम पीते हैं, उससे लू से तमाम प्रकार का बचाव होता है और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। जैसे आम का पना है, आम को हम घर पे कच्चे आम को लेकर के पना बनाते ना
1: जी,
2: पना बनाते उसमें हम चीनी डालते और आम डालते
1: जी,
2: और उसे बढ़िया छान करके पीते हैं जिससे हमारी पानी की पूर्ति होती है।
1: जी सर, यानी और गर्मी के मौसम में एक टाइम हम आम का पना भी खाते
2: जी।
1: जी सर,
2: गर्मी के समय हमें प्याज है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो सके।
1: जी बिल्कुल सर, इस मौसम में क्या हमें तली भुनी चीजों का परहेज करना चाहिए?
2: सेवन परहेज करना चाहिए और बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए।
1: जी जी, अगर सर किसी साथी को लू लग जाती है और वो ज्यादा टाइम तक घरेलू उपचार जो होते हैं उनको करते रहते हैं और फिर भी ठीक नहीं होते हैं तो क्या ये सही है?
2: हाँ सही है, ज्यादा समय होने पर ज्यादा टाइम हो जाता है, घर का उपाय करते रहते हैं और आराम नहीं मिलता है, तत्काल डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है साथी हमारे ऐसा ही करते हैं कि घर में जो चीजें अवेलेबल होती हैं

0: और अपना काम भी करते रहें।
1: देखो गर्मियों में जब ज्यादा धूप पड़ती है तो हमारे शरीर पर छोटी छोटी ममोमियत आयत में हो जाती है, तो उसके लिए हम बचने के लिए बेसन को घोल बनाते हैं और उसमें प्याज नहीं पीस करके डालते हैं, अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, तो उससे हमारा बहुत बचाव होता है, धूप से बचते हैं।
0: तो यानी जो हमारे
1: लू से बचते हैं,
0: तो ये होता
1: और जो गमोमिया होने का वो रहता है, हल्की हल्की छोटी जो फुंसियां हो जाती हैं, वो फुंसियां नहीं हो पाती हैं बेसन और प्याज के घोल से।
0: जी, इसका घोल सर कितनी मात्रा में बनाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या इसके कोई नुकसान है?
1: 50-50 की मात्रा में, जैसे हम 100 ग्राम बेसन लेते हैं तो 100 ग्राम प्याज होना चाहिए
0: जी,
1: उससे हमारे शरीर में थोड़ा ठंडक पहुंचता है, गमोमिया टाइप में लू से बचाता है।
0: अच्छा अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं और चलते हैं, और हमारे श्रोता साथियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर?
1: बस यही हम बधाई देना चाहते हैं सभी को कि हमेशा आम पानी की ये हमेशा बाहर निकलने से पहले एक पानी की बोतल साथ में लेकर के चलें और तली हुई चीजों से बचें, हमेशा थोड़ा ठंडे फल खाने की अपेक्षा करें।
0: जी बिल्कुल सर, सर आपने इतना अमूल्य समय हमारे साथियों को दिया।

बार फिर से साथियों आप सबके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा और साथियों अपनो कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। देखो अपन औरन ने कितनी बढ़िया नौनी सी बातन खून जानो है गो डॉक्टर विनोद जी के माध्यम से और उनने अपन खून बताओ है गो कि अपने जो साथी घाम में काम करा थेंगे घर से बाहर जा थेंगे काम करवे के लाने या फिर कछु और काम के लाने बाहर भी जा थेंगे अगर तो ध्यान रखवे के खाली पेट बिल्कुल भी ना करवे। कई के जो भी कारण हो थे वो लपट लगवे को अपन उन्हें जब खाली पेट घर से बाहर निकल जाऊ थे जा सोचत के अब रंदो तई जाके खा ले या फिर का के दिखाने नहीं है इच्छा नहीं है हमारी तो जी अपनी छोटी छोटी सी गलती जो हो जाती है बे ई लपट खो बिल्कुल नहीं हो तो देती के अजाओ हमें लग जाओ ऐसे ही होना कि अपन कतनी आ बैल मुझे मार तो ई कहावत को ध्यान में रखत भाई अपन को का करने है वो के अपने जो भी साथी घर से बाहर जाऊ थेंगे तो वे खाना खा के जावे और डॉक्टर साहब ने अपन को बताई है कि जब भी घर से बाहर जाऊ थेंगे तो पानी की एक बोतल अपने संगे जरूर रख लेवे ताकि आपको जितने भी प्यास लगे आप पानी पी सकत हेंगे और इसके माध्यम से आपके शरीर में जो पानी की कमी हो जाऊ थेगी वह बिल्कुल भी ना हो पहेगी। संगे में देखो अपन औरन को जब लपट लग जाऊ थेगी तो सबसे पहले तो उपचार जो है अपन और घरेलू करा थेंगे सब जने करा देखो हम भी करा थेंगे घरेलू उपचार के जैसे सक्सा मला थेंगे है आम को पनो खा थेंगे और बढ़िया

थेंगे, पानी खूब अच्छी दम से पिया थेंगे। लेकिन साथियों, जब अपन 2-3 दिन लगातार ये सब काम करते रहे, घरेलू उपचार अपन करते रहेंगे और उनके बाद भी अपनी तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हो पा रहा है, वो बिल्कुल अपन को जा लग रही कि अब अपनी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही हैगी, तो अपन को ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, सीधे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाए चाहिए। क्योंकि देखो, अपन उन्हें डॉक्टर तो है नहीं है, और रही घरेलू उपचार की बात, तो पहले को समय, पहले के वातावरण में और अब के समय और वातावरण में बहुत फर्क आ गया है, वो अपनो पर्यावरण बहुत बदल गया है वो, तो इनके अनुसार अपनो शरीर भी बदल जाऊ थे वो। तो पहले जो अपनों ने अच्छी अच्छी हवा ले थे, अच्छी अच्छी खान पीन ले थे, शुद्ध शुद्ध ले थे, वे आज के समय में नहीं आ। सो ऐसे पहले के समय में जो घरेलू उपचार होते वे फायदा भी करते खूब दम से अपने ऊपर, लेकिन अब अगर समय की बात करवे तो वातावरण अपनो बदल गयो है वो आसपास को, जिसकी वजह से अपनो जो शरीर होते ही वे घरेलू उपचार को सपोर्ट नहीं करते, यानी के अपने घरेलू उपचार से ठीक नहीं होतेंगे। सो एक इन्होंने सबसे बढ़िया उपाय जो ही है गो कि भैया हरो देखो, ज्यादा दिन तक घरेलू उपचार ना करवे, अगर घर में काउखो ऐसी समस्या हो जाए तो आप डॉक्टर के पास उखो जरूर ले जावे। कापतो के अपन और सोच रहे हैं कि लपट लग गई और उनको कोनो और बीमारी हो गई हो, कछु और समस्या हो गई हो, तो ऐसे डॉक्टर बनाए गए हैंगे, ऐसे डॉक्टर बनाए गए हैंगे कि डॉक्टर अपन को जांच करके, अपने खून की जांच करके अपन को पूरी जानकारी बता देंगे कि इन्हें क्या परेशानी है, काय वजह से ठीक नहीं हो रहे हैंगे, और काय तो बुखार इतनो कमजोरीपन काय आ गयो है वो। तो इन सब बातन को हमारे सभी श्रोता साथी ध्यान रखबे, काहे कि देखो मौसम बहुत ही खतरनाक चल रहा है वो अपन और इनके बीच में। तो अपने सब श्रोता भैया बहनन से जई कहबो है वो कि जब भी घर से बाहर निकलवे, धूप में जावे आप अगर, तो अपने सर से बढ़िया अच्छी तौलिया बांध लेवे। और काहे कि एक बात और आपसे कहने हैगी कि जो अपने साथी भैया मोटरसाइकिल को उपयोग करत हेंगे और मोटरसाइकिल से जाऊ थेंगे, तो देखो आप हेलमेट को उपयोग तो जरूर करियो, और हेलमेट के अंदर भी अगर आप तौलिया बांध सको तो तौलिया भी बांधो, ताकि जो खुली जगह रथ हैगी आपके वो खुली जगह पे बिल्कुल भी घाम या लपट ना लग पावे। और साथ ही में आपको चप्पल पहन के नहीं जाने हैं। अब आप चप्पल की बात सुन रहे हो तो जाना सोचिए को बिल्कुल कछु पहन के नहीं जाने आपको, आपको क्या करने है वो कि चप्पल की जगह जूता को उपयोग करने है वो, कहे कि ऊपर को घाम इतना तेज लग रहा है वो कि अपने जो पांव की ऊपर की जगह होती है ना भी टचत है बिल्कुल, ऐसी आग लगन लगत है कि कहा बताए आपको। तो ऐसे आप जूता पहन के जाओ ताकि आपके पांव सुरक्षित रहेंगे और आपको जो धूप हैगी वह बिल्कुल भी ना लग पेगी। साथी में साथियों देखो, डॉक्टर साहब ने अपन को बताई हैगी कि ई मौसम में अपन को जो तली भी चीजें होती हैंगी इनको कम से कम सेवन करने हैं, और हो सके अगर तो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अपन और देखो जल्दबाजी में काम करत रहेंगे और जल्दबाजी में जब घर से बाहर निकल या उठेंगे, घर से खाना नहीं खा के आतेंगे, तो रास्ता में जो भी अपन को तली हुई चीजें मिलती हैं, समोसा, भजिया, मोमोज, जैसे काका तरह तरह की चीजें मिल जाती हैंगी, तो अपन सोचत के चलो घर से खा के नहीं है तो इनको खा के पेट भर लें अपनो। तो ई मौसम में खास तौर से जी तली हुई चीजन से अपन को पोषण दूर रहने है वो, अगर ई समय पे अपन ने अपनो स्वास्थ्य को ध्यान दे लो है वो, तो अपन बहुत बढ़िया अच्छी तरह से रहे आएंगे, नहीं तो फिर आप सोच लो कि तबीयत खराब होने वाली हैगी। तो ऐसे आप सबसे जो ही कह वो है वो कि तली हुई चीजें ना तो आप खाओ, ना अपने परिवार में अपने बच्चन को भी खान दो, क्योंकि मोनी मोड़ा भी बहुत जिद्दी होते ही, उन्हें भी शाम के रोज पापा घरे आ गए और बस उनने कहा हाँ समोसा खाना है मैं, तो पापा से पापा ने जल्दी पैसा दे और मोनी मोड़ा गए जल्दी से लेके और खान लगे। तो जो नुकसानदायक चीजें होती है जिनसे अपन को बचने हैं वो, और डॉक्टर साहब ने देखो बताई हैगी कि अपन ई मौसम में जो है पानीदार जो फल होते हैं उनको सेवन ज्यादा करवे, ताकि अपने शरीर को ठंडक मिले, जैसे ककड़ी होते ही, खीरा होते ही, अबे देखो का कहते ही खरबूजा आ रहा, तरबूजा आ रहा, ये सब चीजें अपन और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खात रहे, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पावे और पानी पर्याप्त मात्रा में बनो रहे, और जितने हो सके आप पानी पीवे, पानी में बिल्कुल भी कंजूसी ना करवे, जब समय मिले जब भी प्यास लगे तुरंत पानी पीवे, लापरवाही बिल्कुल ना करवे कि अबे नहीं तनक देर में पी ले या तनक देर में नहीं तनक और देर में पी ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है वो आपको। और हो सके तो हल्के रंग के जो कपड़ा होते ही आप उन्हें पहन दे, ताकि आपके शरीर को भी राहत मिलेगी।
तो देखो साथियों, अपने आज के कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में काफी वार्तालाप हो गई हैगी। अपन और अन्य डॉक्टर विनोद यादव जी को भी सुनो है, वो उनके अनुसार अपन ने जो भी बातें सुनी हैंगी, कोशिश करें अपन और के ऐसे ही काम करवे और एक टाइम जो है वो अपन आम के पनों को सेवन करवे तो अपना स्वास्थ्य अच्छा बनो रहे हो। प्याज को भी ज्यादा से ज्यादा सेवन करवे। साथ ही में साथियों, अपनो कार्यक्रम से जाबे को देखो समय भी हो चलो है वो, सो अपन ही कार्यक्रम से चलत हैंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताने है वो कि ये कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में जो अपनों ने बीमारी के बारे में जाना थे या मौसमी बीमारी जो होती उनके बारे में जाना थेंगे या फिर इसे हटके आपको कछु और भी बीमारी के बारे में जानने की जरूरत हैगी, आवश्यकता हैगी, तो आप हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से जरूर बतावे, जरूर संपर्क करवे हमसे। इनके नाना साथियों अपना नंबर है वो 9219207749। ई नंबर को आप लिख लो साथियों, ताकि ई नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकत होगी कि जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, लू के बारे में यानी लपट के बारे में जो जानकारी अपन ने डॉक्टर साहब से जानी हैगी वह अपन सबको कैसी लगी हैगी, या फिर कछु और भी आप लू लपट के बारे में कंचाउट होगी कि और कौन कौन से तरीका होते ही लू से बचबे के लाने, तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैंगे फोन के माध्यम से। काय के देखो साथियों, अपनो एक समय होते वो हर कार्यक्रम को और उस समय अनुसार अपन और उनको चलने भी आउते वो, तो अब समय जैसे कि हो चलो है वो कार्यक्रम से जाबे को, लेकिन आपको जरूर बताने है वो कि जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, ई पे अपनी राय सुझाव जरूर देने हेंगे। साथ ही में अगर अपने साथी को पत्र लिखवो चाहते हैं कछु और अच्छी बातें कंचाउत हेंगे, तो पत्र के माध्यम से भी वे अपन से जुड़ सकते हेंगे। ई के लाने अपनो पतो है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। अब देखो साथियों, अपने रेडियो दोस्त वर्षा को दो जावे की इजाजत, काहे कि अपना समय हुआ है वो कार्यक्रम से जावे को, सो अपनी फिर ये मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक हमारे सभी साथी ऐसे ही सुनत रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनो रेडियो अपनी बातें अपने रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन हो आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करते हैंगे। और हमारे किसान साथी उनको बता दें, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करने जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे, जैसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर ले और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज लगा सकते हैं, बाबा पर बतकाव करेंगे। आपको बता दें, वो चाहते हैं कि खेत कल्याण कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करने के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होतेगी और ऐसे में किसान साथी, हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रहेंगे, तो ऐसे में हमें किसान साथी का कर रहेंगे, तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुए हैं, तो अब किसान साथी इनको अगली फसल की तैयारी कर लें चजित और अपनी आय तभी दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे, जैसे कि खेत खाली हैंगे अपन नर्सरी भी कर सकते हैंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष भी अपन लगा सकते हैंगे अपने और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करते हैंगे और मौसम का कुछ ठिकाना नहीं रहता है कि कब बरसात हो जाए, कब जा धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी आप का करबे तो मौसम आधारित खेती करबे। कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय अपन एक 900 लोग गीत सुन ले और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुवा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपनी खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनाते हैं जो 900 लोकगीत को।

की अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित।

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। अरे अबे अपन ने जो नो सो लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो भाई अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुआ चला थे और उनसे जानते हैं कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, का सावधानी उनको बरतने चाहिए, आओ सुनाते हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें जगजीत।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखेंगे जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है, उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है, तो और या तो फिर जो आपका समय है आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, क्या आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है, इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रान वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केंचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर की कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छे से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग आफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्के से छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डाइथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डाइथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है गो, और अपन ने जानो के कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उनने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देंगी, तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं सोचने हैं तब अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा, कैसे अबे अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाएगी और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम होंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन को लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके के कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन को कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कैसे कौन से तत्व की कमी हैगी जो पता चल जाए, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैं समझ सकते हैं और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है। अब जाके तत्व हो पूर्ति करवे के लाने कौन सी दवा अपन हो डालना चाहिए, कौन सी का कौन से अपन हो बीज लगाना चाहिए, तो ये सारी जानकारी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे भी पूछो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तब ही अपना आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप साथियों हम समय होते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर अगले कार्यक्रम में

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों कार्यक्रम को जैसो नाम है तैसो काम भी है। इस कार्यक्रम में अपन एक विधा सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन इस कार्यक्रम में विधा तमूरा, और तमूरा भजनन को अपन आनंद ले हैं। और इस तमूरा भजनन को गा रहे हैं कोमल दास जी। सो कोमल दास जी के स्वर में अपन सुने आज ही कार्यक्रम में जे तमूरा भजनन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में ई तमूरा भजन को।

बिल्कुल दोस्तों, सुमरो बारंबार जी। देखो कितना बढ़िया जो तमुरा भजन अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लाओ है। और ये भजन को गा रहे थे कोमल दास जी और उनके संगी साथी। अब दोस्तों आ एक क्रम में कोमल दास जी के स्वर में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से तमुरा भजन को, लेते हैं तमुरा भजन को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में।

बिल्कुल, चलने परे जरूर हरी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे कोमल दास जी। अब कोमल दास जी के स्वर में अपन आगे एक और गीत सुने और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली।

के बाबा बारे के बैरागी। देखो कितना बढ़िया जो अपन ने तमुरा गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है। आओ ये गीत के संगे संगे अपन एक और आगे गीत सुनते हैं, गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीनी भैया के संग में, सुनत रहो जो अपनो प्यारा सो कार्यक्रम विधा बुंदेली अपने दोस्त माता दीनी भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में आगे एक और तमुरा गीत खो।

बिल्कुल, निर्गुण खेत उजारे जतन बिन निर्गुण खेत उजारे। देखो कितना बढ़िया जो तमगुरा गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कोमल दास जी। अब दोस्तों कोमल दास जी के गीत के संगे संगे हम आप और इनको बता दें कि आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होबे को समय हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को तो दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, और चलत चलत अपन लिख लो हमारा फोन नंबर और हमारे पते को जिसे के आप और हमारे फोन नंबर पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव दे सकें, पहुंचा सकें हम तक फोन के माध्यम से। और पते पे अगर आप चिट्ठी पत्री लिखबो चाहें तो हमें चिट्ठी पत्री भी लिख सकत। सो हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। एक संग हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम के राय सुझाव भी दे सकत के माता दिन भैया हमें आपको कार्यक्रम जो कैसा लगो। सो अब एक संगे संगे देखो अपनो समय भी हो रहा, काय के घड़ी इंतजार अपनो निकट अपन को समय को इंतजार करने आउत। सो घड़ी अपन से कह रही के माता दिन भैया अब आपको ई कार्यक्रम से जाबे को समय भी हो चलो है। सो दोस्तों हमें दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

है क्या आप? हो हाथ में ले तो बीमारी फैले यने तन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप, हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेक।

0: गवर्नमेंट बॉडी है, लोग हैं यहाँ पर, सामुदायिक है, कौन है?
1: आज की मीटिंग में जैसे अपन शुरुआत से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जैसे पीएचई डिपार्टमेंट के लोग हैं, जल जीवन मिशन के अधिकारी हैं, और इसमें जन अभियान परिषद के भी हैं, एसबीएम के भी हैं, और जो ग्रामीण स्तर पर पीआरआई मेंबर हैं जैसे सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, ये सभी लोग हैं, और वीडब्ल्यूएससी मेंबर भी उसमें शामिल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। और साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मीटिंग में खास तौर से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बाहर से आई हैं, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा। टीए के साथ रिलायंस फाउंडेशन मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो हम ये पूरा कार्यक्रम जो आपका चल रहा है उस कार्यक्रम को लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चर्चा इस मीटिंग में हो रही है वो आपको सीधा प्रसारण हम यहाँ से सुनाएंगे, तो आप लोग धैर्य बनाइए और इस पूरी मीटिंग को जरूर सुनिएगा कि क्या कार्यक्रम इसमें चल रहा है।
2: आगे कोई कार्य योजना का हिस्सा है या आप डालेंगे कि जो भी बीडब्ल्यूएससी है उनका क्षमता वर्धन होनी चाहिए इन विषयों पर, जिससे वो लोगों के बीच में बिहेवियरल कैंपेन कर सके और वो चीजें समझा सके,
3: ये सहायता होना चाहिए।
2: तो क्या ये कार्य योजना का हिस्सा बनेगा?
3: प्रशिक्षण हुआ था बीडब्ल्यूएससी का, एक तरह का
2: ठीक है, तो आप इसको प्लीज अपनी कार्य योजना का हिस्सा जरूर बनाइएगा। थैंक यू। एक बार फिर के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में बीडब्ल्यूएससी से भी कुछ लोग हैं, तो हम ये यहाँ से सीधा आप लोगों पर जानना चाहते हैं, उसके बाद सरपंच भी हैं, तो हम सरपंच साहब से भी जानना चाहते हैं कि इस तरीके की जो समस्याएं निकल रही हैं, सरपंच साहब की लोग मोटर लगा रहे हैं, नल बंद नहीं कर रहे, उसमें पंचायत क्या भूमिका देख रही है और पंचायत किस तरह से उसको अपनी कार्य योजना में डाल रही है कि लोग पानी को व्यर्थ ना फैलाएं, नल बंद करें, मोटर ना लगाएं, सबको बराबरी से पानी जा सके, पंचायत किस तरह देख रही है एक बार अगर आप।
4: जैसे जो पानी आता है सबसे पहले तो टोटी होना चाहिए, जिससे अपन को आवश्यकता है जितनी पानी की उतने अपने यूज किया और टोटी अपन ने बंद कर दी। अधिकतर पंचायतों में टोटी है ही नहीं, तो इसका निजात के लिए यही है कि यदि मैं सरपंच होने के नाते पहली बार तो मैं अपनी संस्था से कराऊं, अपनी पंचायत से कराऊं, नहीं हो तो किसी अन्य मदद से भी यह व्यवस्था कराऊं। और इसकी इसकी धारणा को बदलने के लिए जनता में यह सोच करना है कि आवश्यकता आवश्यकता की जननी है, माने आवश्यक जितना पानी है उतना यूज करें, आंगले को भी पानी मिलना चाहिए। इस बात को अभी जनता नहीं समझ रही, क्योंकि यदि सरकार का पैसा आता है जिसमें पैसा खुद का ही लगा होता है तो उसको व्यर्थ समझती है जनता। जनता का कुछ हिस्सा आंशिक रूप से होना ही चाहिए। टोटी 10 रुपए की आई तो 2 रुपए जनता दे दे तो उसमें उसको ये रहेगा कि मेरा पैसा लगाओ, मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि ये सोच है। मैं पंचायत विभाग के माध्यम से मैं जनता के भ्रमण भी करता हुआ जनता की नब्ज भी समझता हूँ, आदमी के चेहरे भी समझना था कि क्या कहना चाहता। और रही बात मेन समस्या ये आ रही है कि जेजेएम के द्वारा शासन के द्वारा कहा गया है कि सरपंच ही माने पैसा उगाए और पानी की व्यवस्था कराए, तो हम सरपंच यदि समिति बना के पैसे के लिए जाते हैं तो ये जवाब कि हमारा तो नल काट दो, हमको पानी नहीं चाहिए, जबकि पानी ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, व्यर्थ भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा नल काट दो, ये सोच रहे हैं। देखिए सोच बनकी धीरे धीरे बदलेगी। और रही बात कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पानी, सर ने हमारे बताया है कि पानी को वो लगाकर खेतों में डाल देते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है, जिसको आवश्यकता हो तो एक लीटर पानी भी उसको सजो के रखते हैं कि मुझे पानी पीने के काम आएगा। तो इस बात को भी मैंने निरीक्षण करना पड़ेगा किसको आवश्यकता है और किसको नहीं आवश्यकता।
2: उसके लिए वही हमारा सवाल भी था, वो हम सब जानना भी चाहते हैं सरपंच साहब कि पंचायत उसके लिए क्या रणनीति बना रही है इस तरीके की समस्याओं को निजात पाने के लिए।
4: तो हमारी हम पंचायत में बैठेंगे और अपनी समिति से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मेरे हैंड ओवर नहीं है मेरा जो जल निगम पानी, तो जब हमारी हैंड ओवर आ जाएगा तो अपनी समिति को अपने हर घर में भ्रमण कराएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे, उसके निष्कर्ष भी निकाल के और पुट अप करेंगे।
2: आप अपनी पंचायत में कुछ कर रहे हैं इस तरीके का?
4: नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी शासन के द्वारा जितना हुआ है वो होगा, और यदि मुझे ऐसे निर्देश प्राप्त होंगे शासन के द्वारा तो मैं उसमें कुछ करूंगा।
2: पंचायत तो शासन के लिए काम नहीं करती ना।

0: जनता
1: नहीं तो अभी, लेकिन हम पंचायत तो करेंगे, लेकिन हमको निर्देश ऐसे आएंगे कि आपको ही चलाना है, आपको ही यूज करना है, आपको सुधारना है, आपको इसमें वॉलंटियर लगाना है, चलाने के लिए आपको फुल व्यवस्था करना है, तो उसमें हम लोग करेंगे।
0: तो क्या कोई BWSC से मैं देख रहा हूँ और भी लोग हैं, कोई अपना बताना चाहिए कि आप किसी गांव में जहां पर BWSC लीड लेके इस तरीके की समस्याओं का समाधान कर रही है, लोगों में नल बंद करना या व्यर्थ पानी न फैलाना, और अगर कर रही है तो किस तरह कर रही हैं आप लोग, कर रही है आपकी समिति, अगर वो कोई शेयर करना चाहे, जिसके बाद हम दूसरे विषय पे चले। मुझे राधा दीदी भी दिख रही है, आप किस तरह कर रही हैं, आप लोग अपना अपना अगर छोटा छोटा एक बार शेयर करेंगे आप अपने ढंग, जिससे लोग बाकी लोग भी ये क्रॉस लर्निंग ले सके। आवाज आ रही है अपना पास से, बोलिए। सवाल ये है कि बाकी आपके गांव में ये सुचारू रूप से चल रही है, तो इसमें आप लोग का क्या भूमिका है, कि आपकी क्या आप कर रहे हो ऐसा जिससे आपके गांव में हर व्यक्ति तक पानी पहुंच रहा है समय से, जो कि बाकी सब जगह पे चुनौतियां दिख रही हैं, वो आप कैसे उसका हल कर रहे हैं?
1: सर मैं बोल सकता हूँ?
0: हाँ प्लीज
1: सर। अभी मैं 8 साल से जो तारा ग्राम से जो संस्था चली है जलरंगम वाली, वो रेगुलर चला रहा हूँ, 8 साल हो गए उसको। लेकिन सर जो ये संस्था चल रही है उसमें मुझे सबसे ज्यादा ये दिख रहा है कि अपना जो लाइन है पानी का वो एक साइड से है, और जो कनेक्शन आपने दिया है वो दूसरी तरफ जाना है, तो जो लाइन निकल के जा रही है उसमें जो गाड़ी वाहन चल रहा है अपना, वो उससे टूट जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर कि ये पानी वेस्ट वहीं हो रहा है सबसे ज्यादा आगे, इसलिए पानी ना तो ऊपर चढ़ पा रहा है, वो वहीं वेस्ट हो जाता है और पानी ऊपर को जा ही नहीं पाता है।
0: एक तो ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर रहे हैं। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि 8 साल से आप बोल रहे हो ताराग्राम में सपोर्ट से कुछ आप क्या बना हुआ है?
1: मैं मेरे गाँव में लगा है सर ताराग्राम की सपोर्ट से।
0: ठीक, आप 8 साल से उसको चला रहे हो तो किस तरह चला रहे हो?
1: सर उसका तो काफी ज्यादा वो है, देख रेख भी करनी पड़ती है, समय बहुत ज्यादा देना पड़ता है, हर आदमी को जाके समझाना भी पड़ता है कि भाई ये अपना ही है सब कुछ, इसको अगर कभी भी अपनी खत्म कर देंगे तो इसको दोबारा नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही इस संस्था का भी करना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, सबसे बोलना पड़ेगा कि ये अपना है, किसी दूसरे का मत समझो इसको, ना कोई गवर्नमेंट का समझो ना इसको, अपन पैसे दे रहे पानी ले रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैसे भी नहीं देते हैं और ऊपर से घर पे सुना के भी जाते हैं, वो भी सब अपन को ही झेल रहा है।
0: कोई ऐसा एक केस उन्होंने वो बताया जो संस्था के सपोर्ट से बना, क्या कोई शासन की जो ग्रुप वाटर सप्लाई स्कीम, इतने सारे BWSC के मेंबर हैं जो चल रही हो और आप उसको सुचारू रूप से चला रहे हो, उसके पीछे किस तरह के प्रयास आप लोगों के, अगर कोई शेयर करना चाहे, वो आपने किसी ने बोला था ना कि हम कितने दिन से चला रहे हैं, तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जिसके बाद हम अगले विषय पे चलते हैं।
2: मेरा नाम सुधा है और मैं ग्राम पंचायत चुरारा से हूँ। जैसे कि ये जल जीवन योजना जो हमारे गांव में आई है, हर घर में नल हो वो भी स्वच्छ पिया जल, तो मतलब सभी के यहाँ पानी पहुंच रहा है। जैसे हमारे गांव में एक आदिवासी बस्ती है, हालांकि 40-47 परिवार होंगे, वहां तक पानी ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच रहा है, काफी ऊंचाई है, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अभी वहां पे नई टंकी बनवाने का निर्माण किया गया है जो हमारे तारे ग्राम की संस्था कर रही है, और हम अपने, मैं परमा संस्था से हूँ और BWSC मेंबर भी हूँ, तो हम हर महीने BWSC की बैठक करते हैं और हर महीने उसका लिखते हैं कि क्या चर्चा हुई क्या चर्चा नहीं हुई, और सभी सदस्यों के साइन भी लेते हैं। और जैसे कि अभी कुछ सदस्य जो थे तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो हमने इस ग्राम सभा 14 अप्रैल की ग्राम सभा में कुछ नए सदस्य उसमें चिन्हित करे हैं जो JJM द्वारा सदस्यों

0: द्वारा भी किया गया है। तो हम लोग अब इस महीने से इस ऐसे सदस्य चयन किए हैं कि हर अपने हर गांव से हर समुदाय से लिए गए हैं जिससे ये योजना अच्छे से चले, क्योंकि ये अभी तो जल जीवन मिशन चला रही है, जब ये हैंड ओवर करेगी तो सरपंच को और भी WSC मेंबर को ही चलानी है, इसलिए भी WSC सदस्यों को सक्रिय होना बहुत जरूरी है। यदि यह सक्रिय नहीं होंगे तो ये योजना नहीं चलेगी, और हमारा यही प्रयास रहता है, हम हर मोहल्ले में जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे पानी पहुंच रहा है, कहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, और जैसे कहीं नहीं पहुंच रहा है या लीकेज की समस्या है तो हम जल जीवन मिशन को उसकी सूचना देते हैं, और शिकायत किया जाने बहुत सही भी किया जाता है, और पंप ऑपरेटर से भी बातचीत करते रहते हैं, बैठक करते रहते हैं, और हम परमात्मा द्वारा हम लोगों ने एक BWSC जो रजिस्टर बनाया उसकी सब लेखा जोखा भी रखते हैं, और जैसे कि हम वहाँ जैसे पंप ऑपरेटर से बात करते हैं कि नियम से ही पानी आना चाहिए, तो हमने वहाँ पे काफी बड़ा गांव है तो हमने नियम बनाया हुआ है कि शाम को 30-40 मिनट यहाँ खुलेगा, 30-40 मिनट वहाँ, फिर सुबह खुलेगा, तो हमारे यहाँ दो टाइम नल आते हैं, सुबह को 3-4 रस्सी सुबह खुलती है, 3-4 रस्सी शाम को खुलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मोटा मोटी समझ में आया वो ये कि अगर स्कीम को सक्सेसफुल चलाना है तो हमें BWSC को एक्टिव करने की आवश्यकता है, पहला विषय। अगर कोई अनएक्टिव, सभी वार्ड्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, और तीसरा आपने बोला था कि रेगुलर मीटिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया।

0: रहेगा, हालांकि मुझे अपने व्यू रखने की वो नहीं होती पत्नी पर, फिर भी मैं रख रहा हूँ कि नाली से भी लाइने गई, तो उसके लिए विभाग का क्या योजना है आगे कि किस तरह से इस तरीके की चुनौतियां हैं जो बार बार टूट फूट हो रही है या जो क्वालिटी इफेक्ट हो रही है नाली से पाइप डलने की वजह से या कनेक्शन होने की वजह से, उसको किस तरह से रिजोल्व करने का विभाग अभी सोच रहा है, अगर आप कुछ भी अपडेट देना चाहें तो।
1: काम चल रहा है, जहाँ जहाँ भी ऐसा सामने आ रहा है, अभी कई गांवों में करवा भी चुके हैं, घर के अंदर कनेक्शन करवा चुके हैं अभी, और भी जहाँ भी सामने आ रहा वो हम लोग PIU को रिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ से फिर वो आगे निर्देशित कर देते हैं कंपनी को काम करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर। अगला विषय सर, चूंकि इसी से कनेक्ट है और उससे जुड़े व्यक्ति भी यहाँ पर है, सर विषय है कि अगर नाली से पाइप जाएगा या कनेक्शन जाएगा तो क्वालिटी इफेक्ट होगी। एक ट्रीट हो रहा है सेंट्रलाइज फिल्टर पे, वहां से डिसेंट्रलाइज वाटर टैंक भर रहे हैं, उससे कनेक्शन हो रहा है। टेस्टिंग जो हमारा अभी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग का जो पैरामीटर्स है या जो हमारी स्ट्रेटजी है वो किस तरह की है? हम सोर्स पे टेस्ट कर रहे हैं, टैंक पे भी टेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके अलावा हम हाउसहोल्ड लेवल पे भी टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं बीच में कंटेमिनेशन ना हो जाए, उसको लेके भी कुछ आप लोग कर रहे हैं?
1: हाँ, इस तरह का कर रहे हैं, गांव के अंदर भी घरों में भी टेस्टिंग चल रही है।
0: और कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है सर?
1: अभी तो एक हम पांच मेंबर भी बनाए हैं हर जगह के,
0: सर के लिए और सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। सर PhD मुझे पिछला कन्वर्सेशन याद है, हालांकि उस पर चर्चा हो गई होगी, फिर भी मैं वापस लेके आ रहा हूँ आपको इस चर्चा पे। PhD वाटर क्वालिटी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, टेस्टिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए किट डिस्ट्रीब्यूट करती है हर विलेज में, है ना, और उसके लिए ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराती है। हाँ। है तो उसको लेके अभी हमारा क्या प्लान है इस वर्ष का किट डिस्ट्रीब्यूशन और उससे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग ड्राइव का, तो वो अगर उसमें थोड़ा आप अपडेट देना चाहें।
1: वाटर क्वालिटी के लिए प्रत्येक गांव में वाटर टेस्टिंग किट प्रदाय की गई है, पंचायतों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में या आशा कार्यकर्ता को जहां जो अवेलेबल थे सबको प्रशिक्षण दिया गया है, और अभी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हर गांव के सैंपल संबंधित क्षेत्र के जो हैंडपंप मैकेनिक है उनके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, संस्थाओं के द्वारा भी प्राप्त हो रहे हैं। वाटर टेस्टिंग हमारे यहाँ पर उपखंडी लैब स्थापित है जहाँ पर 11 प्रकार के पैरामीटर लगाए जाते हैं, यदि उसमें अभी तक तो कोई कंटामिनेशन प्राप्त नहीं हुआ है, यदि कोई कंटामिनेशन प्राप्त होता है तो हम हमारी एक भोपाल में राज्य स्तरीय लैब है वहां पर उस जो स्रोत कंटामिनेट हुआ है उसको वहां पहुंचाते हैं। विगत अभी वर्षों में कोई भी अभी कंटामिनेशन प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को, 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जो रिपोर्ट करती हैं संबंधित संस्था या जो NGO के माध्यम से भी रिपोर्ट लेते हैं हम, कार्यग्राम के माध्यम से भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है कि वहाँ का सैंपल क्वालिटी अफेक्टेड है तो वहाँ का अपन करते हैं। जल निगम के द्वारा WTP के माध्यम से भी टेस्टिंग की जाती है और जल निगम के माध्यम से हर गांव में 4-5 घरों में प्रतिदिन टेस्टिंग की जाती है और वो रिपोर्ट क्रॉस चेकिंग के लिए वो सैंपल हमारी लैब में भी जाते हैं तो लैब में भी उसकी टेस्टिंग की जाती है।
0: सर इससे जुड़े दो और कनेक्टिंग में चर्चा को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सर, अगर जो टेस्टिंग की जाती है उस पर आम पब्लिक का किस तरह एक्सेस है, मतलब अगर मुझे देखना हो मेरे गांव के पानी की क्या स्थिति है तो मैं कैसे देख सकता हूँ उसको, क्या ऐसी कोई सिस्टम अभी बना हुआ है? अगर नहीं है तो क्या हमें उसको अपनी कार्य योजना में रखने की आवश्यकता है?
1: अभी पोर्टल बना हुआ है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम।

0: हुआ है, जिसमें विभाग के TWSM सेक्रेटरी जो कार्पणेन्द्र महोदय जी होते हैं उनकी ID एक्टिव है, और जो लैब में जो केमिस्ट होते हैं उनकी ID, और ग्राउंड में जो FTK जिनको डिस्ट्रीब्यूट की गई है उनकी यूजर बनाया गया है, एक पब्लिक यूजर का भी बनाया गया है, लेकिन अभी वो फिलहाल शायद अभी एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन लोग बाग उस पर भी मन कर सकते हैं।
1: वो आगे
0: हाँ एक स्टेप अभी आया है पब्लिक यूजर वाला। हाँ हाँ
1: सर, जो अभी आपने एक FTK शब्द यूज किया फील्ड टेस्टिंग,
0: हाँ फील्ड टेस्टिंग,
1: तो इस वर्ष की फील्ड टेस्टिंग किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई या होने वाली है?
0: अभी रिफिल किट आई हुई थी, तो मैंने रिफिल किट के माध्यम से टेस्टिंग किया हुआ है। क्या उसमें रिफिल किट में, रिफिल में भी वही सारे केमिकल होते हैं, एक रिफिल से 100 टेस्ट लगाए जा सकते हैं।
1: वो गांव तक पहुंच गई है या अभी हमारे पास है बांटने का या शेयर करने का पंचायतों को प्लान है आगे?
0: हाँ पहुंच रही है, गांव में भी पहुंच रही है और पहुंचा भी दी गई है जल निगम के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से भी, और लैब में तो प्रत्येक गांव के सैंपल आते ही हैं। स्कूल आंगनबाड़ियों का सैंपल टेस्टिंग अभी अभियान चल रहा है, तो उसमें अभियान के माध्यम से टेस्टिंग की जा रही है।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर।
2: अभी बीच में आपको जी पहली बात तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रेडियो बुंदेलखंड पर ये लाइव चल रहा है अपना, तो जो भी हम लोग डेटा देंगे वो एक्चुअल क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इसको सुना जा रहा है। दूसरी बात, जब हम रेडियो के माध्यम से जब हम लोग गांव में जाते हैं तो जो शिकायत रहती है उनकी ये रहती है कि वाटर टेस्टिंग, तो वहां से पानी का सैंपल लेके पहुंचाया जाता है PHE डिपार्टमेंट, लेकिन उसकी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये सरलीकरण किस तरीके से इसको कर सकते हैं कि डायरेक्टली उस व्यक्ति के घर पर जाकर वो रिपोर्ट साझा हो सके? सॉरी,
0: जो भी सैंपल हमारी लैब में आते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है टेस्टिंग करके, जो भी मतलब pH कितना है उसका, TDS कितना है, टर्बिडिटी कितनी है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति लेकर आया है तो उसका अपन फोन नंबर ले लेते हैं और अपने केमिस्ट का भी फोन नंबर उसको दे देते हैं कि जैसे टेस्ट हो जाएगा तो आपको अवगत कर दिया जाएगा और आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले जल निगम के माध्यम से भी वो आते हैं टेस्ट के लिए आते हैं, तो वो अपने टेस्ट संबंधित फॉर्मेट में उनको प्रदाय कर दी जाती है।
1: तो इन्होंने इसका आंसर पहले भी दिया है कि पब्लिक पोर्टल जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, तो जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा एक्सेस सब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन उसका सरलीकरण ये किया जा सकता है कि आप संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि संस्थाओं की रीच जिले के ऑलमोस्ट सभी जगह तक है, तो आप टेस्टिंग अगर हम लोगों के साथ भी रिजल्ट शेयर करेंगे तो तब तक हम भी सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में वो शेयर करवा पाएंगे, तो एक ये तरीका है। दूसरा, हम लोग अलग अलग CLF के क्लस्टर से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जिसमें हमारी हजारों दीदियां और हजारों महिलाएं जुड़ी हुई है, हम वहां भी उस प्लेटफॉर्म को भी यूज करके सब तक वो रिपोर्ट पैरेलली जब तक ये प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं हो रहा है हम शेयर कर पाए कर सकते हैं।
3: एक और था कि जैसे वॉस फोरम हम लोगों ने जो जिले में बनाया है और वॉस फोरम की हम मीटिंग करते हैं, चूंकि PHE जल निगम स्वच्छ भारत मिशन और अन्य संस्थाओं के सभी लोग और कम्युनिटी के लोग एक साथ बैठते हैं, तो आगे से हम ग्राम सभी लोग, हम लोग जो साथ में बैठते हैं, लीड तो ताराग्राम ही कर रहा है इसको, तो हम सब लोग ये जो वाटर स्टेटस रिपोर्ट है और ये जो वाटर क्वालिटी की जो रिपोर्ट है लैब वाली, वो भी इस मीटिंग में हम लोग शेयर करें तो फिर सभी लोगों तक और सरलीकरण हो सकता है, ये मेरा सुझाव है।
1: बहुत अच्छा सुझाव है, आप हम इसको एक्शन पॉइंट में भी रखते हैं कि अगली बैठक से हम इस मीटिंग के माध्यम से भी इस प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं इन चीजों के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू मनीष जी। सर बस एक छोटा सा और, चूंकि मैं अपने माध्यम से सब तक वो जानकारी आपके थ्रू पहुंचवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, सर जो किटें डिस्ट्रीब्यूट हुई है या अभी होनी है, क्या उससे पहले ये जो ट्रेनिंग वाला प्लान है SHG वुमेन्स का

0: है ऑलमोस्ट बहुत सारे गांव 100 विलेजेस तक रीच है, जेल सहेलियों की भी है ना, बहुत सारे गांव तक रीच है हमारे BWSC मेंबर्स जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो क्या उनको भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा PHE बनाएगी जिससे आपके लिए भी आसान हो जाए, क्योंकि ये पर डे दो दो तीन तीन विलेजेस में जा रहे हैं तो अवेयरनेस में, और क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में वो TOT अगर हो गई है तो उसके बाद लास्ट उसका उसका बेनिफिट हमें तब होगा जब BWSC ट्रेंड हो जाएगी और BWSC हर मीटिंग में समुदाय को उस बारे में ट्रेंड करेगी। तो अभी हमें इसमें और भी आगे तक का सफर तय करना है। तो क्या हम अपने कार्य योजना का ये हिस्सा बना रहे हैं कि अगली जो ट्रेनिंग्स के बैचेस हैं उसमें संस्थाएं, जल सहेलियां, BWSC के मेंबर्स भी प्रतिभाग करें, उसका पार्ट रहे, इससे ज्यादा ब्रॉड लेवल पे ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट हो सके? क्या ये आपके प्लान का हिस्सा बन सकता है?
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जो बाल ऑपरेटर है उनको भी अपन इसमें सम्मिलित करेंगे, और जो गांव की महिलाएं एक्टिव हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करने का उद्देश्य है, और पहले भी सभी गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है।
0: आपका एनुअल प्लान बन रहा होगा ना, मतलब नहीं हुआ है ना?
1: हाँ चल रहा है,
0: चल रहा है, तो आप ये सब उसमें कर रहे करने का सोचे हैं?
1: हाँ हाँ हाँ,
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी साथी संस्थाओं से भी लोग हैं, और हमारे बीच में हालांकि सर और मैम ने स्ट्रिक्ट बोला था कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, इनके अगर आपका भी कोई सवाल हो तो, और हमारे BWSC मेंबर्स का भी कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई इनपुट हो तो प्लीज रखिए, जिससे कि उसके सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके और जिम्मेदारी तय की जा सके उन समस्याओं के समाधान के लिए। तो वॉलेंटियरली ओपन डिस्कशन है, कोई भी इसमें अपनी बात रख सकता है, संस्थाओं से भी। दूसरा, कुछ संस्थाएं हमारी ये ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के विषय में बात हो रही है, इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सोर्स सस्टेनेबिलिटी को लेके, क्योंकि पानी बहुत सेकेंडरी सोर्सेस सारे ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, तो भूमिगत जल को किस तरह से उठाया जाए, मतलब वाटर लेवल को बढ़ाया जाए, ऑल्सो किस तरह से हमारे जिले के जितनी पंचायतें हैं उनको वाटर सफिशियंट, मतलब जल संपन्न की जाए, जल संपन्न कर सके, तो उसपे भी हमारी जो संस्थाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, पंचायत से बात करें तो उनके भी हम सुनेंगे कि वो किस तरह से कम्युनिटी और किसानों के साथ इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी ओपन डिस्कशन में कोई जल और पीने के पानी गुणवत्ता या उससे उसकी ऑपरेशन से संबंधित कोई भी विषय पर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो
1: विभाग द्वारा रिचार्ज पिट बनाए गए थे तालाबों में, जिससे जैसे मान लीजिए किसी गांव में पानी की अपना एक गांव था कुलुआ मान लेते हैं, वहां पर तालाब में अपन ने दो रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया था, बारिश का जो पानी है वो ट्यूबवेल के माध्यम से नीचे रिस करके स्रोतों में जाता जाता है, जिससे वहां के जल स्रोत में जो गर्मियों में जो पानी की समस्या आती थी वो एक हद तक कम हुई है, और रिचार्ज पिट पंचायतों में रिचार्ज पिट भी बनाए गए हैं, पंचायत के माध्यम से बनाए गए हैं, उस पे भी रिचार्ज संरचना काफी हद तक उसमें सुधार कर हुआ है।
0: थैंक यू, हालांकि ये आगे हम इस विषय पे चर्चा करने वाले थे, अभी अगर हमारी साथी संस्थाएं हमको जोड़ना चाहती हैं जल आपूर्ति के विषय में, ग्रो वाटर सप्लाई में अगर उनके जो योगदान है वाटर क्वालिटी के अलावा उनके जो योगदान है या चुनौतियां या सहयोग जो वो डिपार्टमेंट की ओर या पंचायत से देख रही है, तो अगर उससे संबंधित कुछ उनकी कोई इनपुट है तो यहाँ रख सकते हैं।
2: जैसे आपने बताया है तो हम सब लोग मिलकर ही जो पेयजल आपूर्ति है उसको सही कर सकते हैं, तो इसमें हमारा मतलब जो जल जीवन मिशन है उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। परमार संस्था और ताराग्राम जिले में ऐसी दो संस्थाएं हैं जो वाटर स्टेटस रिपोर्ट बनाती हैं, जो

0: स्टेटस रिपोर्ट है वो केवल और केवल पेयजल से संबंधित ही है, जैसा आप बता रहे थे पेयजल के बारे में। तो हमारा जो निवाड़ी जिला है पूरे ऑल एमपी में दूसरे नंबर पर है बुरहानपुर के बाद, जो पूरा 100% यहाँ पर हो गया है। लेकिन हम लोगों ने अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी बहुत गैप और चैलेंज हम लोगों को मिल रहे हैं। अभी पिछले 3 साल से जो हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, अभी शायद ये 1 साल हमारे इस वाले प्रोग्राम को ही है, तो हम लोग मिलकर जिले में एक वाटर स्टेटस रिपोर्ट बनाते हैं, जो जिसमें वास्तविकता क्या स्थिति है उस स्थिति को विभाग के साथ रखते हैं और विभाग उन स्थितियों पर काम करता है। तो पिछले अभी 1 साल का हम डेटा देखें तो 2500 से 3000 से ज्यादा नवीन नल कनेक्शन हम लोग दोनों संस्थाएं मिलकर अपने जिले में करवा पाए हैं। साथ में जो नवीन बाल कनेक्शन है वो भी हम लोगों ने 50 के ऊपर अभी नए लगवाए हैं। ये क्या है कि कहीं ना कहीं ये गैप थे, मतलब सरकार के लोग, जल निगम के लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे या पंचायतें अपनी बात वहां तक नहीं रख पा रही थी। तो एक वाटर स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने वो जो गैप थे, और उनके अकेला मतलब यहाँ हम लोग बैठे हैं तो ये नहीं है कि किसी की कमी हम लोगों को उजागर करना है, एक समाधान के थ्रू हम लोग जिले में काम करते हैं कि समस्या ये है जो हमारी वाटर स्टेटस रिपोर्ट शायद आप लोगों के साथ शेयर की होगी, तो उसमें समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, दोनों चीजें हम लोग रखते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या का समाधान तब हो सकता है तब हम उसको मिलके काम करेंगे। ऐसा नहीं है केवल हमने समस्याएं बता दी जल निगम को कि भाई अभी भी 500 कनेक्शन होने हैं या 50 नवीन बाल होने हैं, उनका समाधान क्या है, कैसे वो लग सकते हैं, कैसे नवीन नल कनेक्शन को हम कर सकते हैं और वास्तविकता क्या स्थिति है, वो सारी स्थिति हम लोग वाटर स्टेटस रिपोर्ट में शेयर करते हैं। ये हम जिले लेवल पे नहीं करते हैं, ये हम स्टेट लेवल पे भी करते हैं। एमडी सर ने भी अप्रिशिएट किया है हम लोगों को कि आपका बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो विभाग है उसको एक मंच मिल जाता है, उनको एक पूरा डेटा मिल जाता है कि उन्हें काम कहाँ करने की जरूरत है। अब पता चला कि जिले में बहुत सारे ऐसे गाँव है, 300 से ऊपर गांव है, तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन संस्थाओं के माध्यम से उन्हें ये सपोर्ट मिल जाता है, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके माध्यम से सपोर्ट मिल जाता है कि वास्तविक स्थिति या उन्हें कहाँ काम करने की जरूरत है। तो एक तो हमारा पेयजल के उसमें ये संस्थाओं का मिलके बहुत अच्छा प्रयास है, इसके साथ साथ जैसा अभी बताया था कि हम लोगों ने वॉलेंटियर भी गांव गांव लेवल पे खड़े किए हैं। परमार संस्था का एक मॉडल है जल सहेली मॉडल, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कहा है, और अभी ताराग्राम से भी जो वाटर यूजर मतलब जो BWSC समिति के सदस्य है वो लोग भी एक्टिव हुए हैं, क्योंकि बराबर कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो रहे हैं। तो ये सब पूरा कैडर मिलके, क्योंकि अकेला परमार जल्लीग्राम या ताराग्राम मिलके काम उतना कर तो रहे थे, हम सब अपने अपने सृजन भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जिले में काम कर रही है जल संरक्षण को लेके, तो हम लोग अलग अलग वे में कर रहे थे। लेकिन अभी 1-1.5 साल से जब से हम लोग ये वास फॉरम की नींव रखी है तो मिलके काम कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि मिलके जब काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, पेयजल के क्षेत्र में हो या जल संरक्षण के। तो अभी जल संरक्षण का मुद्दा नहीं है, जल संरक्षण की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी हम सृजन ने, परमार्थ ने, इफ्तिका तो अभी मुझे इतना पता नहीं है, और ताराग्राम ने, जिले में जो हमारे यहाँ चंदेला बुंदेला तालाब है उनको भी हमने रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सारे काम किए हैं। थैंक यू सर।
1: इफ्तिका का प्रतिनिधि हमारे साथ इस फोरम में आज से ही जुड़े हैं, तो ये इनका पहला मीटिंग है। ये लोग भी काम कर रहे थे पर अलग से टॉपिक में कर रहे थे, तो इस फोरम का ये पार्ट बने हैं। अगला विषय है हमारा जल संरक्षण को लेके, वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी को लेके। तो उसको लेके अभी हमारे क्षेत्र में हम किस तरह काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से हम किसानों को क्रॉप पैटर्न उसके बारे में सिखा रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या सपोर्ट हमें डिपार्टमेंट ऑफ PRI से रिक्वायर्ड है, वो अगर शेयर कर सके, अगर सृजन से आसानी आपको शेयर करना चाहे तो।
2: हम वाटर के रिगार्डिंग जैसे इसके पहले DA और परमार संस्था

0: आपसे बहुत सारी बातें रखी, सेम हम भी, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर को इस तरीके से कि उसका टेस्ट चेक करना और उसका सेफ वाटर बनाना, इस तरीके का अभी स्टार्ट नहीं किया है। उतना पायलट बेसिस पे हम लोग ने प्रतिपुर और निवाड़ी के गांव में स्कूल में वाटर कूलर प्योरीफायर इंस्टॉल किया है, साथ में जल मीनार बनाए हैं बंगरा ब्लॉक में कुछ 5 गाँव में। तो इस लाइक वाटर अवेलेबिलिटी को कैसे सस्टेन किया जाए गांव लेवल पे कि वाटर अवेलेबल रहे टिल नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ, जून जुलाई जब तक बारिश नहीं होती है, उसको कैसे वहां पर पानी का ऐसे हाउस होल्ड लेवल पे दिक्कत ना आए कि वहां पर पानी जैसे कि इसके पहले हम लोग अभी गांव में 21 पॉन्ड डिसल्टेशन के, जैसे इसके पहले मनोज जी बता रहे थे, हम लोग ने सिंस 2021 हम लोग ने प्रतिपुर और निवाड़ी मिलाकर के 21 टैंक डिसल्ट किया। साथ में उससे ये समझ में आया कि आसपास का जो बोरवेल और वेल्स हैं उसका वाटर सस्टेनेबिलिटी टिल द मंथ ऑफ मई जून रहा है, और उसका पानी जब उस महीने नहीं रहता था टैंक डिसल्ट होने से पहले, लेकिन आफ्टर टैंक डिसल्टेशन क्योंकि एडिशनल वाटर पोटेंशियल ऐड हो गया उसमें, तो आसपास के अराउंड 1.5 किलोमीटर्स तक हम लोग ने वेल रिचार्ज उसका डाटा लिया, जिससे हमें इसमें समझ में आया कि टैंक के थ्रू फायदा है। और उसका जो सिल्ट है, किसान जानते हैं कि तालाब की मिट्टी खेत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रिप से अपने खेत में 20 ट्रॉली 50 ट्रॉली जिसको जैसा बन पड़े उन्होंने डाला, उसे उनका जो वाटर है जो सिल्ट जिनके खेत में डली जिनके और खेत में नहीं डली, दे हैव सिक्योर्ड 1 वाटर फॉर देयर क्रिटिकल वाटर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग रबी सीजन, मतलब गेहूं का एक पानी उनको कम लगी। साथ में जो हम लोग ने नाला जो गांव में जो ग्राम पंचायत में नाला है जो प्राकृतिक नाले हैं उसमें दोहा मॉडल का निर्माण किया, जो उसका अगर देखे तो टेक्निकली 10 फीट 10 to 15 फीट उसका लेंथ रहता है और 5 फीट उसका अकॉर्डिंग टू द नाला का विथ उसका विथ रहता है 2 मीटर्स राइट एंड लेफ्ट साइड 1 1 मीटर ड्रॉप आउट करके 5 मीटर्स उसका एवरेज उसका विथ रहेगा, और 1.2 मीटर्स का अराउंड 1.52 सॉरी टू
1: चलेगा।
0: तो ये जो दोहा मॉडल और इसके साथ साथ गेलियन चेक डैम रिनोवेशन डैम लिंक इंस्टॉलेशन जितने भी एनआरएम के काम है वो सब हम लोग ने गांव में किए हैं, और अभी साथ साथ हम लोग रूरल डेवलपमेंट में और क्या क्या काम कर सकते हैं उसके वो भी कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी बहुत बड़ा काम है। नैनो ऑर्चर्ड हम लोग लगवाते हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो बीज आते हैं और किसानों को जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स रहती है, अभी नेचुरल फार्मिंग पे बहुत काम हो रहा है जिसको हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो उस पे काम हम कर रहे हैं। उनके साथ साथ और भी
1: सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अभी हम ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हमारा भी एक्सपीरियंस के अराउंड है और हमने ये देखा कि जब किसान के पास पानी आ जाता है तो वो अपनी प्रैक्टिसेस चेंज कर देता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चेंज कर देता है। जो ब्रीड वो लगातार का ही हमारा एक्सपीरियंस है कि जो वो गेहूं का ब्रीड लगा रहा था जिसमें पानी कम लग रहा था, पानी आते उसने ब्रीड चेंज कर दिया, थोड़ा और पानी आते उसने फसल पैटर्न चेंज कर दिया, वो धान लगाने लगा, और पानी आ रहा है तो वो गन्ना लगाने लगा। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का रोल आप किस तरह से मेक श्योर कर रहे हैं कि उसको वो ऑन कर पाए, जिससे जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लानिंग और उसका किस यूटिलाइजेशन हो पाए, उसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे मेक श्योर कर रहे हैं, वो तो क्या उसको उसमें सक्सेस मिला है।
0: विलेज डेवलपमेंट कमिटी एंड वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप आर द मेन टू कम्युनिटी ग्रुप जो ये इंश्योर करते हैं कि जो वाटर अवेलेबल है हमारे पास टैंक में या फिर दोहा के नालों में और जो उनके कुओं में पानी है कि उससे एटलीस्ट जब गर्मियों के मौसम आए तो एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो पानी अवेलेबल होना ही चाहिए, रेदर देन यूजिंग कि हम जब हमारे पास अगर पानी है तो हम

0: इंटेंसिफाई क्रॉप जैसे कि वीट हो गया तो उसको लगाएं. अगर पानी कम है तो आप मस्टर्ड, चना, सरसों ये सब में जाएं, और जो कि अगर पैसों के मुकाबले देखे तो वो भी अच्छा है. साथ में ये भी इंश्योर करना कि वो जैसे कि गांव में अगर और भी ऐसे संरचनाएं बनाने की जरूरत है तो उसका एक रिपोर्ट अपना जो वाटर सिक्योरिटी कमेटी उसमें से जो बीडीसी और डब्ल्यूपीजी की मेंबर्स होती हैं उसमें एक दो मेंबर्स ये ग्राम पंचायत के भी पीआरआई मेंबर्स में एक उनकी भी जो कमिटीज होती है जैसे कि यहाँ पर दीदियां बता रही थी कि वो बीडब्ल्यूएससी की मेंबर्स हैं उसी तरीके से वो भी अपना मेंबरशिप है उसमें तो अपना रिपोर्ट जमा करती हैं कि इस तरीके का संरक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए मैनेजमेंट के लिए आप इसमें काम करें चाहे उसका सिल्ट निकालना हुआ हो या उसके आसपास के मिट्टी को रोकने के लिए गेबियन स्ट्रक्चर का बनाना हुआ हो इस तरीके से इंश्योर किया जाता है. और साथ में इनकी जो डिस्ट्रिक्ट में अगर जैसे कि इसके पहले अटल भूजल योजना बहुत अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने जो लास्ट ईयर का जब मीटिंग हुआ था इट सीम्स कि पानी का अवेलेबिलिटी पहले निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल जोन में था बट इट कम्स अंडर आफ्टर इतना सारा जो काम हो गया तो इट्स लाइक इन सेमी क्रिटिकल जोन में एक पर्टिकुलर फेज जो निवाड़ी का वो आया है इट्स वो काबिले तारीफ है. अभी देखा जा रहा है कि वैसे ही संरचनाएं और बाकी जो वो अवेलेबल वाटर है उसको किस तरीके से यूज किया जाए और हम अच्छे इम्प्रूव वैरायटी एग्रीकल्चर के जो सीड्स हैं हमारा राजविंद्या विंध्या राज्य ग्वालियर का इंस्टीट्यूट है वहां से हमारा अच्छा हमारा उनके साथ अच्छा बैठक है तो उनके थ्रू ब्रीडर वैरायटी जो सीड है जो सबसे अच्छा सीड प्रोडक्शन में काम आता है जिसमें पानी भी कम लगता है गेहूं की और साथ में उसकी जो उपज है बाकी गेहूं के पैदावार से 1 एकड़ में लगभग 25-30 क्विंटल्स निकल जाती है तो इस तरीके के वैरायटीज को किस तरीके से गाँव में प्रमोट किया जा सकता है ताकि किसानों का पानी भी बचे और उनको अच्छी बीज जो यूनिवर्सिटी बनाती है उनको उनके गाँव में पहुंच जाए.
1: इसके अराउंड कोई इंस्टीट्यूशन भी वर्क कर रहा है
0: जी.
1: जो इसको रन कर रहा है और सॉरी बस थोड़ा सा
0: तो वुमन प्रोड्यूसर ग्रुप और विलेज डेवलपमेंट की कमेटी वही डिसाइड करती है. एक तो वुमन प्रोड्यूसर ग्रुप गांव की समिति होती है महिलाएं होती हैं जो दे आर ऑल फार्मर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि उनको इस साल पानी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए और कौन सा नहीं तो वो एटलीस्ट अगर इम्प्रूव वेराइटी आती है तो वो अपने 1 एकड़ लैंड में वो क्रॉप लगाएं.
1: थैंक यू सलनी. जस्ट लास्ट थिंग जो आपके सक्सेसफुल मॉडल है या जो आपके इंस्टीट्यूशन है उसके साथ हमारे जो दूसरी ज्योग्राफी से जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं है अच्छा बीज जो आप सही समझ बता रहे थे या मार्केट लिंकेजेस से वो किस तरह से दूसरा जो ज्योग्राफी है जो लेफ्ट आउट है अभी उन फैसिलिटीज से कैसे अलाइन कर सकते हैं उसके अलाइनमेंट का कुछ प्लान हम कर सकते हैं इसमें बाकी लोग भी उससे बेनिफिट ले सकें इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के.
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हते इवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में. दोस्तों अपन जावे फील्ड की रिपोर्ट सुन रहे थे अब यही के संगे संगे अपन अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं और कार्यक्रम में सुनते हैं गीत को लेते हैं गीत को आनंद. नमस्कार.

0: जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले गए तो गोपियक्का बोली श्री कृष्ण भगवान से,
1: आप कुल जन मेरे से बचाते रहे, ये आप कुल जन मेरे से बचाते रहे, नाचते

हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी गाय और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा में पुजारी।

0: ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना।
0: कल तलक तुम्हारी थी, कल तलक तुम्हारी थी, आज ये हमारी है। कल तलक तुम्हारी

एक गोरी की लरों में कलैया हमाए माने बस गई मोनैया।

गई और लगन में लटकी, अरे पद बेड़ में बज गई आज लगन में लटकी थाणी। ओ थाने अपनी लई खान थाने।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनहरी बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभकल में। शुभकल कार्यक्रम में हम हैंगे आपके संगे आपके रेडियो दोस्त वर्षा। श्रोताओं, कार्यक्रम में जो बातचीत होते ही बातों आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपने पर्यावरण से जुड़ी भी चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत करत रहेंगे। संगे में कभू अपन आजीविका से जुड़ी भी बातचीत भी अपन करत रहेंगे। तो आप सबको बता देवे कि आज अपने लाने बहुत ही खुशी वालो दिन है गो। अब खुशी वालो दिन इसे है गो कि अपने जो श्रोता हेंगे विकेश भैया ने खुद से शुभकल कार्यक्रम बना के अपने पास भेजो है गो, और उनने कही है कि आप बस इमें गाना लगा के और इसी तरह एडिटिंग करके, यानी कि कछु गलती हो गई हुई सुबह काट के और ये प्रोग्राम को शुभकल कार्यक्रम में चला दो, तो हमें बहुत ही खुशी हुई जे। और संगे में विकेश जी को जो भी कहो है वो के हमारे जो भी श्रोता हेंगे जो रेडियो से ज्यादा लगाव रखत हेंगे और हर वक्त रेडियो बुंदेलखंड को सुनत हेंगे, भी सब जने एक एक कोनो विषय ले लेवे, यानी के जो भी प्रोग्राम रेडियो के माध्यम से चल रहे हेंगे, जैसे शुभकल है, हम होंगे कामयाब है, महिलाएं के कोनो कार्यक्रम है, या बारी हमारे गांव की है, हमारा गांव हमारी सरकार है, खेत खलियान कार्यक्रम है, तो जोन भी विषय आपको अच्छो लगत हुए वो विषय को लेके एक प्रोग्राम बनावे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगे। संगे में साथियों हमें भी बहुत अच्छा लगे। काहे के देखो, आप जानत होगे रेडियो बुंदेलखंड सामुदायिक रेडियो है गो, और जब समुदाय की भागीदारी में बढ़ जाएगी तो बहुत ही नौनो हो जाएगो। तो समुदाय की भागीदारी बढ़ावे के लाने अपन सबको जो प्रयास करने आए, शुरुआत विकेश जी ने कर दी हैगी, और हमें लगत है गो के ई कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे और भी जो श्रोता साथी हेंगे उनको भी जरूर मन में लगे कि अरे भैया हमें भी बनाने हैं प्रोग्राम। तो देखो, रिकॉर्डिंग की जहां तक बात हैगी तो रिकॉर्डिंग आप अपने फोन में करके और हमें व्हाट्सएप कर दो बस, फिर तो आगे की जो प्रक्रिया हो जब हम पूरी कर दें। आप ये बात की चिंता ना करो बिल्कुल भी कि भैया हम गाना कैसे लगाएं, हम उखो सही बोले कि नहीं बोले, कछु गलत तो ना बोल दे, बा जिम्मेदारी हमारी हैगी, हम सुन के एडिटिंग करके उकी फिर अच्छो प्रोग्राम बना के जवई रेडियो पे उखो जान दें, ठीक है। और भैया आज के कार्यक्रम में अपने विकेश भैया बड़े खुश हैंगे और शुद्ध बुंदेलखंडी में बोल के अपन और इनके बीच में बता रहे हैं कि जो मौसम देखो कितना भयंकर घाम पर रहो है वो, तो इनके लाने अपनी लू से बचवे के लाने काका उपाय अपन और कर सकते हैं, कैसे बचाव करवे, सावधानी काका रखवे, विकेश भैया अपन को बता रहेंगे। तो सुनत हेंगे कार्यक्रम शुभकल में जो की विकेश जी द्वारा बनाओ गो है।

नमस्कार रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता भाइयों को आपके दोस्त वीकेश की प्यार भरी नमस्कार। श्रोता भज्जा हो कार्यक्रम शुभ कल लेके मैं हाजिर हूँ आप सबन के बीच में आज। और जा तपती गर्मी एकदम जो लू बढ़ रही है इबे

0: देखो अपने पर्यावरण को भी एक विशेष वो कहो जात कार्य जो कार्यक्रम यही की लाने हैं शुभ कल। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत आज यही विषय से करें अपन और आज के कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं अपन, इनके पहले एक गीत सुने थे, ये गीत के बाद अपन जो है बातचीत करें।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

0: कर करो सिंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: तो श्रोता भैया हो पाए अपन ने जो गीत सुनो, ये गीत को सुनने के बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो जो लू चल रही है, गर्मी को जो महीना और घाम जो कितना तेज पड़ रहा हो, पानी की जगह जगह किल्लत हो रही, तो सबसे बड़ी बात तो है कि मौसम में पानी जितना अपन सब बचा पाए उतनी बचाए। काहे के अब पानी की यह है कि देखो कते गर्मी में तो ज्यादा जरूरत पड़े पानी की और गर्मी में वो कम पाए जात, तो अपन बचाए। और राह चलते आदमी कौन से आ रहे तो उन्हें पानी वानी पियाए, उनकी मदद करें, जो सबसे बड़ा पुण्य है भज्ज। तो कार्यक्रम शुभ कल में तो लू को लेकर जब बातचीत आप सब जो है सुनाना ही। अब देखो ऐसा है कि भैया हर हम तो जो ही चाहूत के देखो ये लू के माहौल में गर्मी में को बारे कड़वी से पहले अपने कोशिश करके देखो कि ज्यादा जरूरी हो तब करो, और शाम सुबह हैं जो काम बाहर की है भी निपटा लो अपनी। अगर आप सबन को लगा थे कि नहीं जाने जाने हैं तो जा रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हेल बेल्ट लगा लो अच्छा बढ़िया है, जी से अपन को गर्मी की जो लू है बार ना लग पाए लपट, तो अपन जो कर सके तो बचाओ मतलब जरूरी है। और पानी की बोतल अपनी जरूर संगे ले रहो, काहे के भैया हो तो कम पानी मिला नहीं मिला तो अपन कहते दूर तक जा रहा है कैसे का अपन हूँ।

0: पानी क्यों मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, तो अपनों संग इंतजाम बहुत जरूरी है बच्चे से। तो जिस अब बातें हैं बाकी, अब जो है कि देखो कोशिश बच्चे और बूढ़न की लू से बचावी की है, तो कहे कि उन्हें तो कोशिश करो कि शाम सुबह नहा माए रहे और दोपहर में तो अपने घर के अंदर रहे, बच्चे वही में ठीक ठाक है। कहे कि अब देखो बच्चा है भी नहीं मानस खेले बगैर, शाम सुबह ने खेल ली मैं तो पज्जा में अपने घर के भी तय कर लू। ये कहे भज्जा इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, कहे कि अपन खुद देखो काम करने ही करने हैं तो थोड़ा बहुत बाहर करने पर, लेकिन इनकी एक कोशिश करो कि इन्हें ना कड़न दो लू में, जो ये है जो गर्मी के 2 महीना कड़ जाए तो लू अपने शांत हो जाए तो ना पानी वानी बस जाएगा ही। भज्जा देखो जैसे पर्यावरण से जुड़े भाई माहौल में तो अब एक और है कि गर्मी के मौसम में अपने जो पेड़ पौधा लगावेगी तैयारी है भाभी कर लें चजीत। तो जी सब बातें हैं कि क्या पेड़ पौधा लगाए तभी तो जो पर्यावरण अपनो हरो भरो रहे और आवे वो कल अपने शुभ बुझे, तो ये शुभ कल के लाने पेड़ पौधन की भी तैयारी करो क्या बरसात आ रही है ना। तो अपन कार्यक्रम को और सुने पहले जो गीत सुने थे
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचो, वृक्ष ही जीवन है।

और इन वृक्षन में और क्या क्या लगे हैं, अरे निपुण, अरे निपुण।

0: रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: गीत के बाद श्रोता भैया हरो आपको फिर से स्वागत करते हैं आपको दोस्त बीतीस कार्यक्रम शुभ कल में। तो श्रोता भैया हरो जो लू से जुड़ी हुई चर्चा अपनी चल रही थी और हम आपको जैसे बताएं जैसे हम यहाँ को पनो हैं जी सब चीजें हैं अगर काउ में लू लग जाए सख्सा है तो जी लगा जैसे देसी नुस्खा है अपने जैसे डॉक्टर भैया तक जो लोग नहीं जा पा रहे तो अपने घरे ही इंतजाम कर लू। लेकिन डॉक्टर को तो अपन हो जैसे दिखाने ही दिखाने हैं बला परवाही नहीं करने का है कि अभी को अपन सब जाना था कि डॉक्टर जब तक वो देखना ले बस तकलीफ हो तो वो हिसाब से दवाई दे तो जी सब बातें हैं। सोचा गर्मी के मौसम में लपट से अपन को बड़ो ख्याल करने अपने अपने बाल गोपालन को सबको भैया। और देखो जो होती में कि जैसे अपन को सावधानी रखे रहो तो अपन को सामना नहीं करने पड़े ऐसी दिक्कत को तो जी सब बातें हैं। बाकी श्रोता भैया हरो जो हमारा कार्यक्रम के सोला वही पे आने आप हमें जो है सुझाव दियो अपने के जो है और हम सब लोगों से एक और के वो चाहे सभी श्रोता भैया से जैसे कार्यक्रम आप लोग भी बना के भेजो ताकि अच्छा लगा था अपनी रेडियो है अपनी बातें हैं ये अपने तपन आने बड़ा है ये तो अपन सब जने सही दे रहा हो तो अच्छा लगा थे। और बाकी अभी कार्यक्रम से आपके दोस्त भी किस को दो जावे की इजाजत और जावे के पहले लिख लो मोबाइल नंबर और पता जिसे चिट्ठी या फिर फोन करके आप हमें बता पाओ तो हमारा मोबाइल नंबर है रेडियो को 94251417 26 और पता है ओरछा तगेला के पास ताराग्राम ओरछा जो जो हमारा पतो है सो जे चिट्ठी भेज सकत वो जो नंबर अपन ने बताओ सो ये व्हाट्सअप कर दो मैसेज भेज दो तो ये सब बातें हैं सो अपनी राय सुझाव दो भज्जा। और अपने जो कार्यक्रम है ऐसे ही आगे चलाते रहे सबको सहयोग बना रहे सो ई कार्यक्रम शुभ कल से अपने दोस्त भी किस खुद अजावी की इजाजत नमस्कार।

0: अपना रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सुन रहे थे कार्यक्रम शुभकल। शुभकल कार्यक्रम श्रोताओं बीकेश जी द्वारा बनाओ गए है वो और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम बीकेश भैया ने बनाओ है वो। हालांकि अब कोनो ऐसी बात नहीं आऊ मैं के एक्सपर्ट जुड़े हो या फिर कछ और बतकाव हो धोए, लेकिन जो ई मौसम में जरूरी बातें हैं बेसब्री बातें उनने कार्यक्रम में करी हेंगी। तो बीकेश भैया हम आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हेंगे और पूरी रेडियो बुंदेलखंड की टीम आपको धन्यवाद करत हैगी कि आपने एक नई पहल शुरू करी हैगी और वो अंग्रेजी में कन्वे लगत हेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये बात को ध्यान में रखत भाई आपने जो पहलो कार्यक्रम बनाओ है वो एकदम से उम्दा लगो, बहुत ही नोनो कार्यक्रम लगो है वो अपन सबको। और हम चाहू थेंगे, हमारी पूरी टीम चाहू थेगी कि ऐसे ही हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं वे भी एक एक विषय को लेके भैया रहो और काके तई एक एक प्रोग्राम जरूर बनावे, काहे कि हम उनको भी तनक बोझ कम हो जाए है गो। रोज के रोज 11 घंटा प्रोग्राम चलाऊ थेंगे, अब 11 घंटा में 3 जने कैसे कवर कर पेहेंगे। तो आप सबको सहयोग अगर बनो रहेगो तो हमारे जरूर सफल हो जाएंगे। और रेडियो बुंदेलखंड तो आपको अपना ही रेडियो है गो, है कि नहीं या? सो आप सब जने जरूर सोच विचार करियो ये बात पे। और बीकेश भैया तो देखो अब अपने तैयार हो गए हैंगे एक नए रिपोर्टर बनके। तो बीकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत उम्दा सो कार्यक्रम और आज की मौसम को देखत भय आपने जो कार्यक्रम बनाओ है गो, आगे भी आप ऐसे ही कार्यक्रम और भी बना के हमारे बीच में जरूर भेजत रहे, हमें बहुत अच्छो लगे गो। तो साथियों अब कार्यक्रम शुभकल को समय तय समाप्त हो बेचारा है गो। तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, अगर आप पत्र लिखवा चाहतेंगे तो हम आप रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। अब हम चला देंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभकल बदलती जलवायु के लिए।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को अजीत का अभिवादन
2: और विमलेश का नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लगातार कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आज हम कार्यक्रम का प्रारूप थोड़ा सा बदलेंगे
2: जी।
0: अक्सर हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, लेकिन आज आरंभ करना चाहते हैं एक लघु कथा से
2: जी।
0: जो कि आप कहते हैं कि हमें लघु कथा बहुत पसंद आती है, तो आइए सुनते हैं आज की लघु कथा।
2: एक बार एक नौजवान शिष्य महान दार्शनिक सुकरात के पास आया और उनसे पूछा,
0: गुरुवर, सफलता का रहस्य क्या है?
2: सुकरात ने उससे कहा,
0: मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो
2: जी। दूसरे दिन वो युवक सुकरात से नदी के किनारे मिला।
0: सुकरात उसे लेकर नदी में आगे बढ़ने लगे।
2: वे दोनों नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे
0: जब तक नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया।
2: और नदी के बीच में पहुंचकर अचानक ही सुकरात ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया।
0: पानी के भीतर सांस लेने में अक्षम होने के कारण, श्रोताओ, वह युवक पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से संघर्ष करता रहा,
2: लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उस

0: उसका ये संघर्ष विफल रहा।
1: मरता क्या ना करता, श्रोताओं उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार पानी से बाहर आ जाए।
0: पानी से बाहर निकलते ही वो युवक हांफते हुए तेजी से सांस लेने लगा।
1: उसे ऐसा करते देखकर सुकरात ने पूछा,
0: ये बताओ जब तुम पानी के भीतर थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
1: उस लड़के ने कहा, मैं चाहता था सांस लेना।
0: सुकरात ने कहा,
1: यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना सांस लेना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी।
0: इसके अतिरिक्त सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। तो याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने का रहस्य है
0: उसकी पूरी शिद्दत से चाह करना और वैसा परिश्रम भी करना।
1: जी हाँ, और वैसा परिश्रम भी करना
0: जी।
1: आपको बता दें श्रोताओं कि पिछले दिनों में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और प्रश्न था कि इन दिनों ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं
0: जी, प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को क्या दिया जाता था?
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग किसी का भी उत्तर सही नहीं था। इसका उत्तर है, प्राचीन यूनान में प्रथम आने वाले को जैतून के पत्तों का मुकुट,
0: दूसरे स्थान पर आने वाले को जैतून के पत्तों की माला
1: और तीसरे स्थान पर आने वाले को जैतून का फल दिया जाता था। आइए श्रोता मित्रों, अब चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हमने कल भी किया था, आपको कार्यक्रम सुनने से पहले हल करनी होगी
0: एक पहेली,
1: और वह भी 30 सेकंड से एक मिनट के अंदर, क्योंकि आज का कार्यक्रम भी इसी पहेली पर आधारित है।
0: पहेली है,
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
0: आपके लिए क्लू है,
1: बिहार,
0: शाहबाद।
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए ये लघु गीत।
1: जी हाँ, ये लघु गीत सुनिए। और जब ये लघु गीत बज रहा है तो जल्दी से हमें फोन मिलाकर आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
0: उत्तर देने के लिए हमारा IVRS नंबर है
1: 8800440559।

0: बढ़ते गए।
1: तो आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: जी हाँ श्रोताओ, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
3: हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
4: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था।

0: बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
1: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
0: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
2: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
3: सुना तुमने?
4: क्या?
3: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
4: हैं?
3: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
4: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
3: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली के मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
4: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
0: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
5: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमारा कुंवर सिंह का करें?
6: अगर सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
7: चाहिए कि जिसके बारे में
3: जान सब हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
7: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
4: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
7: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
3: जी हुजूर,
7: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
3: जी हुजूर।
7: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
8: चलो चलो चलो आरा चलो चलो चलो चलो।
2: 26 जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
7: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
8: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, किशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
2: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
9: साथियों, आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं।

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ।

0: अमर सिंह की सेना पराजित हुई, चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह!

0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
1: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
2: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
3: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह
4: जिंदाबाद!
3: भारत माता की
4: जय!
3: भारत माता की
4: जय!
5: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अटरालिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई।

जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया। कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट

0: गंगे, आज तुझको ही देता हूँ ये उपहार।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह।
1: ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम,
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैंने सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह ती अठारह,
2: छह चौक।
5: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
6: अरे मीना, तू रो क्यों रही

0: और राहुल तू खेलने नहीं गया?
1: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
0: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
1: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊँ?
0: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
1: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
0: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
2: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
1: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है पर पहाड़ा।
1: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
1: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
1: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
1: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
1: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
1: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
4: खत्म हुआ झगड़ा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है कि आज का प्रसारण आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
5: इसी प्रकार सुनते रहें उमंग,
4: और मन में आने दीजिए नई तरंग,
5: और अपने मित्रों में बांटते रहें
4: नए मन की तरंग के साथ मन की उमंग।
5: अब अजीत और विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी के पांचवें एपिसोड में मैं आरजे वर्षा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं इस एपिसोड का मुख्य संदेश है तरल अपशिष्ट और इसके प्रकार, जैसे ब्लैक वाटर एवं ग्रे वाटर। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षित संग्रह, उपचार एवं निपटान। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर का प्रभावी प्रबंधन, साथ में सामुदायिक भागीदारी। श्रोताओं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपके बीच में कुछ सवालों को हम बताना चाहेंगे। इन सवालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेंगे। तो सवालों को सुनिए और हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। ग्रे पानी जैसे कि कपड़े, बर्तन धोने और नहाने के बाद का पानी, पौधों को पानी देने या बाहर की जगह साफ करने के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है क्या? हाँ या नहीं। दूसरा सवाल है, ब्लैक पानी जो शौचालयों और नालियों से निकलने वाला मानव अपशिष्ट मिश्रित गंदा पानी होता है, क्या इसे बिना उपचार के पौधों को पानी देने के लिए उपयोग किया जा सकता है? हाँ या नहीं। यदि गंदे पानी का सही ढंग से उपचार नहीं किया जाए तो यह नदियों और तालाबों को प्रदूषित करता है, जिससे वह पानी पीने, खेतों में उपयोग करने और नहाने के लिए असुरक्षित हो जाता है। श्रोताओं यह सवाल हमने आपके बीच में इसलिए पूछे हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। तो जब कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद आप सभी इसका जवाब जरूर दीजिएगा हमारे नंबर पर फोन करके। हमारा नंबर है 9219207749। आइए श्रोताओं आज का कार्यक्रम एपिसोड नंबर 5 हम शुरू करते हैं।
8: हेलो हेलो मनीष जी, आप कहाँ हैं? अरे हम अभी लाइव होने वाले हैं, जल्दी आओ।
9: हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट।

0: और दे दीजिए, घर पर थोड़ी सी समस्या आ गई है, मैं अभी इस गड़बड़ को सुलझा रहा हूँ।
1: गड़बड़? क्या गड़बड़, क्या समस्या?
0: रुको रुको रुको, पहले पहुँचता हूँ फिर सब समझाता हूँ, जल्दी मिलते हैं।
1: जल्दी आना।

0: आखिरकार तुम आ ही गए, क्या हम तुम्हें तालियों के साथ स्वागत करें?
1: हाँ, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ, न सिर्फ तुम्हें बल्कि हमारे श्रोताओं को भी। देखो, जहाँ हम खाना बनाते और बर्तन धोते हैं, वहाँ से पानी रिस रहा था। गंदा पानी बाहर नहीं जा रहा पा रहा था क्योंकि नाली जाम हो गई थी और वह रोज वहाँ जमा होने लगा। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा आलसी जरूर हूँ, और यह तो तुम जानती हो कि मैं मरम्मत कराने की पूरी प्रक्रिया टालता रहा।
0: हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सुस्ती तो मशहूर है, हम सब जानते हैं। खैर, फिर क्या हुआ, आगे बताओ।
1: अब यह रिसता हुआ पानी हर तरफ फैल गया और कूड़ेदान में पड़े कचड़े के साथ मिल गया, और पूरा किचन, क्या घर बदबू से भर गया। नाली पूरी तरह बंद हो चुकी है और मेरा घर नाले जैसा महकने लगा है। चारों ओर मच्छर, मक्खियां और कीड़े रेंग रहे हैं। यहाँ तक कि खाने में भी चींटियां मिल रही हैं और हवा नम और भारी लगती है।
0: ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या संयोग है, यह तुमने यहाँ समस्या साझा की और यहाँ आज ठीक इसी विषय पर बात करने वाले हैं हम लोग। चाहे वह खाना बनाने या बर्तन धोने से निकला गंदा पानी हो या शौचालय का, अगर हम इसे सही तरह से प्रबंधित नहीं करेंगे तो यह गंभीर समस्या बन सकती है, जैसे तुम्हारे किचन में।

0: बदबू फैली और मच्छर मक्खियों का अंडा बन गया। कल्पना करो, अगर यह घर घर और बड़े समुदाय में अक्सर होता रहे तो हाल कैसा होगा।
1: सही कह रही हो तुम, यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।
0: मुझे यकीन है मनीष जी कि हमारे श्रोता अब हमारा ये एपिसोड की शुरुआत करने का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसी समस्याएं हम सबकी जिंदगी में उभर कर सामने आती हैं और इसलिए हमारा कार्यक्रम पूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: दोस्तों, हमारे शो में आपका स्वागत है। अब तक आप हमें अच्छी तरह पहचान चुके होंगे। मैं आरजे मनीष हूँ और मेरे साथ है मेरे को होस्ट आरजे वर्षा।
0: अभी अभी आपने आरजे मनीष जी की कहानी सुनी और जैसा मैंने कहा, आज हम उसी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे।
1: मैं सभी के सामने वादा करता हूँ कि इस एपिसोड के खत्म होते ही उस रिसाव को ठीक करूँगा और अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, तरल अवशिष्ट क्या है। दोस्तों, घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो पानी बर्बाद होता है उसे हम तरल अवशिष्ट या वेस्ट वाटर कहते हैं। यह वह गंदा पानी होता है जो मानव उपयोग या अन्य उपयोगी के लिए अब उपयुक्त नहीं होता। इसमें बर्तन धोने, खाना बनाने और शौचालय से निकलने वाला पानी शामिल है। अगर इसे सही से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह, जिसे तरल अपशिष्ट भी कहते हैं, गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी तरल अपशिष्ट एक समान नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के दो प्रकार होते हैं, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर वह गंदा पानी है जो खाना बनाने, बर्तन धोने, स्नान करने और कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मल मूत्र से जुड़ी कोई गंदगी नहीं होती है, यानी इसमें शौचालय या लैटरिन से निकलने वाला पानी नहीं होना चाहिए। घरेलू उपयोग में आने वाले पानी का लगभग 70% ग्रे वाटर में बदल जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने ग्रे वाटर का उपचार, पुनः उपयोग या पुनर्भरण करें। वास्तव में हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जहाँ संभव हो पानी की खपत को कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, चावल, दाल या सब्जियाँ धोने में इस्तेमाल किया हुआ पानी अलग रखकर पौधों को पानी देना या बाहरी क्षेत्रों की सफाई के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। हम इस पर इस एपिसोड में थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे।
1: दूसरी ओर ब्लैक वाटर बहुत अधिक प्रदूषित होता है, क्योंकि इसमें शौचालय का, मानव मल मूत्र, सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो या खराब रख रखाव वाले लैटरिनों से रिसाव शामिल होता है। इस प्रकार के पानी को सुरक्षित रूप से निपटने से पहले विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। ब्लैक वाटर में रोग जनकों का स्तर भी अधिक होता है, इसलिए इसमें जैविक या रासायनिक उपचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए उचित तरल अवशिष्ट प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसके बिना यह गंदा पानी पीने के पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है, बीमारियां फैला सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो हम इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं, अनावश्यक ताजा पानी की खपत घटा सकते हैं और ये सभी कदम हमारे गांव को हरा भरा और स्वच्छ बना सकते हैं।
0: अब बात करते हैं कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह कोलेरा और दस्त जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है जो गंदे पानी के कारण होती है। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि अपशिष्ट जल का ठीक से उपचार नहीं करते हैं। दूषित पानी तेजी से संक्रमण फैला सकता है, खासकर उन गांवों में जहां लोग साझा जल स्रोतों पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। दूसरा, तरल अवशिष्ट

0: अवशिष्ट प्रबंधन हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। अगर अवशिष्ट जल को सही तरह से निपटाया नहीं गया तो हानिकारक रसायन और बैक्टीरिया हमारी नदियां और तालाबों में चले जाते हैं, जिससे पानी पीने, खेती और स्नान करने के लिए असुरक्षित हो जाता है।
1: एक और महत्वपूर्ण कारण है पुनः उपयोग और पुनर्भरण यानी रिसाइकिल और रीयूज सरल तरीकों जैसे सोख गड्ढे, रिसाव गड्ढे और उचित नाली चैनल से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, सिंचाई वाहनों की सफाई, बाहर की सफाई आदि के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी उपाय ताजा पानी की मांग को कम करेंगे।
0: और भूजल का भी ध्यान रखना है। अगर हम तरल अवशिष्ट को लापरवाही से फेंकते हैं तो यह जमीन में रिसकर हमारे कुओं और बोरवेल्स के पानी को प्रदूषित कर देता है। इसलिए अवशिष्ट जल को अलग रखना और ठीक से उपचारित करना अनिवार्य है।
1: अब जब हमें पता चल गया है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए ग्रे वाटर पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि ग्रे वाटर कम प्रदूषित होता है, इसे पुनः उपयोग करना आसान होता है। तो आइए कुछ आसान तरीकों को जानें, जिनसे हम ग्रे वाटर को सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग करके अपने गांव को स्वच्छ और जल समृद्ध बना सकते हैं।
0: एक सरल तरीका है खाना बनाने और बर्तन धोने से निकलने वाले ग्रे वाटर को नाली के माध्यम से इकट्ठा करना या फिर बाल्टी में जमा करके पौधों को पानी देने के लिए उपयोग करना। बाथरूम का अवशिष्ट जल सोख गड्ढे या रिसाव गड्ढे से जोड़ा जा सकता है।
1: घरेलू स्तर पर सोख गड्ढा, रिसाव गड्ढा बनाना बहुत आसान है। सोख गड्ढे के लिए हम पत्थरों या भट्टी में पकाई गई ईंटों से भरा हुआ एक गड्ढा खोद सकते हैं और ग्रे वाटर को वहां इकट्ठा कर दे सकते हैं। एक अन्य तरीका है रेत और बजरी फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना। यह स्वाभाविक रूप से गंदगी को हटा देता है और पानी को सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग के योग्य बनाता है। रिसाव गड्ढा भी होता है जो हनीकॉम तकनीक से बने ईंटों की पंक्तियों से निर्मित होता है।
0: हनीकॉम तकनीकी ये क्या होती है?
1: हमने पिछले एपिसोड में लैटरिन में हनीकॉम गड्ढों के बारे में भी बात की थी। तो अब बस वही कल्पना करो कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा दिखता है। छोटे छोटे षटकोणीय छिद्रों से भरा हनीकॉम तकनीक ईंट और सीमेंट या प्लास्टिक की सीट से इसी तरह की परतों वाली संरचना बनकर उपयोग करती है। ये हनीकॉम गड्ढे गंदे पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं और मिट्टी व साबुन को फिल्टर कर साफ पानी जमीन में जाने देते हैं।
0: स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई गांवों में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सफलतापूर्वक सोख गड्ढे बनाए गए हैं।
1: रुको रुको, तुम बता सकते हो कि सोख गड्ढा क्या होता है और यह ग्रे वाटर को कैसे प्रबंधित करता है?
0: जी हाँ बिल्कुल। सोख गड्ढा एक छोटा ढका हुआ गड्ढा होता है जो पत्थर और बजरी से भरा होता है। यह गंदगी को फिल्टर करके पानी को जमीन में धीरे धीरे रिसने देता है, जिससे पानी ठहरने और भूजल प्रदूषण की समस्या नहीं होती है।
1: ओहो, आप समझ आया। तो सोख गड्ढे भूजल को भी फिर से भरने में मदद करते हैं, क्योंकि ग्रे वाटर मिट्टी में धीरे धीरे रिसकर कुओं और बोरवेल को सूखने से बचाते हैं, है ना?
0: बिल्कुल वर्षा, लेकिन याद रखना चाहिए कि सोख गड्ढे या रिसाव गड्ढे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप किसी निम्न भूमि वाले क्षेत्र में रहते हैं और जहां बाढ़ का खतरा रहता है तो वहां सोख गड्ढा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह ओवरफ्लो कर सकता है या आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषित कर सकता है। इसलिए सोख गड्ढा बनाने से पहले कुछ सुरक्षा सुझाव याद रखें, जैसे कि उच्च जल स्तर, पथरीली भूमि या फिर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सोख गड्ढे का उपयोग ना करें।

0: किसी भी पेयजल स्रोत यानी हैंडपंप या बोरवेल से कम 10 मीटर की दूरी रखें।
1: यह तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और क्या आप जानते हैं कि ग्रे वाटर जो रसोई बाथरूम और धोने से निकलता है दो स्तरों पर प्रबंधित किया जा सकता है। हाँ, एक घरेलू स्तर पर और दूसरा सामुदायिक स्तर पर।
0: सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर को कुछ स्मार्ट और सतत तरीकों से प्रबंधित किया जा सकता है, जैसे कि कम्युनिटी रिसाव गड्ढे जो रहते हैं, वेस्ट स्टेबलाइजेशन तालाब और निर्मित वेट लैंड्स। सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर को कुछ स्मार्ट और सतत तरीकों से प्रबंधित किया जा सकता है, जैसे कि कम्युनिटी रिसाव गड्ढे, वेस्ट स्टेबलाइजेशन तालाब और निर्मित वेटलैंड्स।
1: कम्युनिटी रिसाव गड्ढा एक ईंटों से पंक्तिबद्ध गड्ढा होता है, जिसे गांव के एक सुविधाजनक स्थान पर कई घरों के लिए बनाया जाता है। इन घरों से ग्रे वाटर गड्ढे में पहुंचाया जाता है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन तालाब एक उथला मानव निर्मित तालाब होता है, जहां घरेलू अपशिष्ट जल प्राकृतिक रूप से उपचारित होता है। फिर हमारे पास निर्मित वेटलेट्स हैं। ये ऐसे इंजीनियर सिस्टम हैं जो पौधों और मिट्टी की मदद से प्राकृतिक वेटलेट्स की तरह ग्रे वाटर का उपचार करते हैं।
0: तो अगर आप 5000 से अधिक आबादी वाले किसी बड़े ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो आप यह विषय अपनी पंचायत के साथ उठा सकते हैं। वे यह पानी लगा सकते हैं कि इन ग्रे वाटर प्रबंधन विधियों में से कौन सी गांव में की भौगोलिक स्थिति और जरूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त होगी।
1: हाँ, बिल्कुल सही। अब चलिए ब्लैक वाटर पर आते हैं। क्योंकि इसमें मानव अपशिष्ट शामिल होता है, इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका है उचित स्वच्छता प्रणालियों का उपयोग, जैसे कि सेप्टिक टैंक और ट्विन पिट शौचालय।
0: हाँ, एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया सेप्टिक टैंक और ट्विन पिट यह सुनिश्चित करते कि ब्लैक वाटर का ठीक से उपचार हो और आसपास के क्षेत्र प्रदूषित ना हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली कराना चाहिए, कम से कम हर 3 से 5 वर्षों में, ताकि ओवरफ्लो ना हो। जबकि ट्विन पिट शौचालय प्राकृतिक रूप से अवशिष्ट का अवघटन होने देते हैं और सेप्टिक टैंक के साथ एक सोख गड्ढा होना चाहिए, ताकि टैंक से ओवरफ्लो होकर निकलने वाला ब्लैक वाटर सीधे खुले नाली में ना जाए। इन दोनों प्रणालियों का उचित रख रखाव यह सुनिश्चित करता है कि ब्लैक वाटर का प्रभावी रूप से उपचार हो और यह जल स्रोतों व मिट्टी को प्रदूषित ना करे।
1: बिल्कुल,
0: यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि जैसे अवशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। ब्लैक वाटर का सही उपचार मच्छरों की संख्या कम करता है, बीमारियों को घटाता है और हर किसी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ गांव सुनिश्चित करता है।
1: हमने व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है इस पर बात की, लेकिन वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए पूरे समुदाय को मिलकर काम करना होगा। कई गांवों ने स्थानीय समितियां बनाकर अपने तरल अपशिष्ट की निगरानी करके इस सफलता पूर्वक प्रबंधित किया है।
0: सही कहा आपने, समुदाय मिलकर सूख गड्ढे खोद सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं और नालियों ढकी रख सकते हैं, ताकि गंदा पानी साफ पीने के स्रोतों से ना मिले। अच्छी ड्रेनेज से घरों से अवशिष्ट जल को दूर ले जाती है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम होता है और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। इन प्रणालियों को गांव की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है, ताकि वे प्रभावी रूप से काम करें।
1: एक और शानदार पहल है स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित करना। कुछ गांव रेत या बजरी फिल्टर से होकर गुजरने वाले ग्रे वाटर को खेतों में सिंचाई के लिए पुनः उपयोग करते हैं, जबकि कुछ ने वर्षा जल को स्टोरेज टैंकों में जमा करके खेतों और घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग कर पानी की बर्बादी कम की है।
0: हम तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सफलता कहानियों से भी सीख सकते हैं, जहां सूख गड्ढे और ड्रेनेज सिस्टम से ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को काफी बेहतर बनाया है।
1: पीने के पानी और स्वच्छता विभाग की ग्रे वाटर मैनुअल रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन कर रही है, जिसके तहत अब तक 11.8 लाख से अधिक ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणालियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से 8.9 लाख सूख गड्ढे हैं। यह दर्शाता है कि सही योजना बनाकर हम इस समस्या का प्रभावी समाधान कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, हम मानते हैं कि आज का एपिसोड थोड़ा हैवी था, लेकिन आज हमने बहुत कुछ आपको बताया। हमने जाना कि तरल अवशिष्ट प्रबंधन मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम जैसे कि ग्रे वाटर का पुनः उपयोग, ब्लैक वाटर का प्रबंधन, सेप्टिक टैंकों का रख रखाव और सामूहिक प्रयास हम सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, हर एक कदम मायने रखता है, चाहे वह ओवरफ्लो नाली की रिपोर्ट करना हो, सूख गड्ढा बनवाना हो या जागरूकता फैलाना हो। हम जो भी कदम उठाएंगे वह हमें एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के करीब ले जाएगा।
0: अगर हम अपनी नालियों और अवशिष्ट का सही प्रबंधन करें, न सिर्फ पानी बचेगा बल्कि हम स्वस्थ जीवन भी जी सकेंगे। आइए संकल्प लें कि हम ग्रे वाटर का उपयोग करेंगे, अपने घरों में ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को नहीं मिलने देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अवशिष्ट जल का सही प्रबंधन हो। हमें अच्छी तरह से काम करने वाली स्वच्छता प्रणालियों बनाने और उनका रख रखाव करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहे।
1: साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, एक स्वच्छ गांव ही एक स्वस्थ गांव है।
0: सुनने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने गांव को चमकते रखें।
1: आज के कार्यक्रम यानी के संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी के पांचवें एपिसोड से जाने का होता है अब हमारा समय। अपने रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
1: अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी।
2: अरे आ गई अंत।

0: सबसे पहले अपन संगे संगे गीत संगीत भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गीत संगीत सुनाएंगे, इसके बाद मौसम की जानकारी अपन सुनाएंगे।
1: जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती जी।

से लावे हैं भारी, ई खेती से लावे हैं भारी, अपनी भूमि रे खुशहाली, अपनी भूमि रे खुशहाली। सुमाला अरे माला माल कर देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती। फसल उपज खो खूब बढ़ावे, फसल उपज खो खूब बढ़ावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे। सुलावई अरे लावई हाँ लावई लावे हमें देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख।

किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.5 समाचार सुने हुए बारे हमारे सब किसान साथियों को एक बार फिर से बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं ये कार्यक्रम खेत खलिहान में। और श्रोता भैया हम लेके हाजिर हो गए हैं आप सबके लाने मौसम आधारित जानकारी को। तो जो मौसम आधारित जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जो जानकारी कौन कौन से क्षेत्र के लाने हैं ये भी हम आपको बताए दे रहे हैं। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जिनमें टीकमगढ़ छतरपुर दतिया और निवाड़ी जिला शामिल है वो। साथ ही आगामी 5 दिन को मौसम को पूर्वानुमान इस प्रकार से है वो। मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त भी जो मौसम के पूर्वानुमान अनुसार जानकारी बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के लाने हैगी। और इनमें बताया गया है वो कि शाम के समय गरज चमक के संग ओलावृष्टि आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना हैगी। आमतौर पर शुष्क मौसम रह सकत है वो। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात को न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और गरज चमक के संग वर्षा तथा तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैगी। सूजी में खड़ी फसल को गंभीर नुकसान भी हो सकत है वो। किसान साथियों को सलाह दी जा रही है कि वे पकी भई जो फल है सब्जियां हैंगी उनकी कटाई को कार्य शीघ्र से कर लेवे। साथ ही में कमजोर फसलों को सहारो भी दे देवे। अब बात करते हैं श्रोताओं मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श की। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप देखो जा रहे हो, अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण करवे तथा पाए जावे पर बचाव हेतु इमिडाकोप्रिट दवा की 0.5 मिलीलीटर

कीटनाशक के छिड़काव कर लिए गए। जिन किसान भाइयों ने खाली खेतों की जुताई नहीं करी है, वे विगत सप्ताह में भारी बारिश से प्राप्त नमी को लाभ लेते भय जुताई को काम कर लिए गए। अब बात कर रहे थे ये फल फूल और सब्जियों के बारे में। किसान भैया टमाटर मिर्च तथा बैगन की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग को प्रकोप देखो जा रहा है। वो इसे बचाव हेतु किसान साथी

आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पान के लगे भय बरेचा की मरम्मत को कार्य कर ले गए। भिंडी की फसल में लाल कीड़ा को प्रकोप हो सकत है वो, अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण करवे और अगर कीड़ा पाओ जा रहा है वो तो उनके बचाव हेतु ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फूल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़ने से दिखाई दे सकते है वो, अतः इसे बचने के लाने अपने किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। किसान भाई नए बाग लगावे हेतु स्थान को चुनाव कर दे, साथ ही में खुदाई को कार्य भी शुरू कर दे गए। नींबू वर्गीय पुराने पौधा के तने पर चूना में प्लाईटाक्स मिला के लेप कर ले गए ताकि धूप से तना की क्षति ना हो गए। अब बात करे थे ये साथियों अपने पशुओं की, पशु बकरियां और मुर्गियों की। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोटू व जहरी बुखार के टीका जरूर लगवा लेवे ताकि बारिश के मौसम के आगे तक इनमें अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास हो पावे। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि, गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान को देखत भय कच्चे छत बारे पशुशालाएं के गिरवे को डर बने रहते हो, सो इसे बचवे के लाने कच्चे पशुशालाएं की मरम्मत को कार्य भी जल्दी से जल्दी कर ले ताकि कच्चे छत वाले पशुशाला में पशु सुरक्षित रह पावे। तो साथियों जो जानकारी हम आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से, वो जो जानकारी आपको रेडियो बुंदेलखंड पर बताई जा रही है। आज की यह जानकारी इतने की अगली जानकारी हम आप तक फिर से लेके आए हैं। आप ऐसे सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनी रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। अभी अपन ने जो मौसम आधारित जानकारी को सुनो और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों तक जो जानकारी पहुंच रही हुई है, कैसे अब जो मौसम परिवर्तन हो रहा हो, खासतौर पर गर्मियों में इस तरीके का मौसम परिवर्तन, कहीं कहीं तो जब मौसम इतना करवट ले जाते हैं कि कहीं कहीं पानी बूंदाबांदी हो जाते हैं, कितम कितम तो ओले पड़ जाते हैं, तो मौसम करवट जब ले थेगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं खेती में भी आते हैं। तो हमें खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उनको बचावे के लाने हमें अथक प्रयास करने हैं। कैसे बच सकत आप सभी श्रोता साथी भली भांति जाको जानत भी हैंगे, कैसे अपनों पर्यावरण को अपन लोग बचा सकते हैंगे। खासतौर पर हमें कोशिश करने के हमें जैविक पद्धति की ओर जावो बहुत जाना जरूरी है। कैसे आने वाले समय में हम जैविक पद्धति को अपनावे की कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। वह हमारे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में जैविक पद्धति से अपना खेती को करन लगे हैंगे और आधुनिक खेती करवो, प्राकृतिक खेती करवो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज वाला विषय भी है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर हमारे किसान साथी करत हैंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा भी होते है। अगर जमुनिया की बात करें और हमारे कुलुआ में भी कुछ किसान महिलाएं हैं जिन्होंने जैविक खेती करवो स्टार्ट करो है, वो ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैंगे कि हमारे किसान साथी अब बदलते समय में अपनी खेती भी बदल रहेंगे। तो हमें जब बदलाव के आगे चलने हैं, वो बदलने हैं अपनी खेती की, जब पुरानी पद्धतियाँ हो, नई चीज़ें को नई तकनीकी से अपन हो खेती करने हैं को, तो समय समय पर हम हर बार अपने किसान साथी के लाने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेके आतेंगे। तो हमें आशा है कि जो जानकारी पाके हमारे किसान साथी जरूर अपने खेती में जरूर बदलाव करें। तो अब वक्त हो चुका है जो कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जावे को

कैसो लगो जो कार्यक्रम हमें जरूर बताओ। हमारे जा नंबर पे नंबर है 92 19 20 77 49, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आप चिट्ठी पत्रिका भेजना चाहते हैं को पत्रिका को पत्र है मो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। तो अब हमें देव जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई है अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हमले क्या गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आओ सुनते हैं आज बढ़िया से हास्य गीतन को और उन गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आओ दोस्तों, देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनाते हैं बढ़िया से हास्य गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं कालीचरण राजपूत जी।
1: अरे काऊ सोत ने बुरा करो है के

0: तो है आदो सिलगत है कंडा। देखो कितनो प्यारा जो टूटका गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कालीचरण राजपूत जी। आओ दोस्तों अब एक क्रम में सुना थे अपन अगले साथी के गायब है गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो ये गीत को गा रहे हैं बलबीर सुमन जी।
1: महिला सीट भई सरपंच की शुभारंभ रो चुखरिया को संग।

बिल्कुल दोस्तों, 3 दिन से बोली निन्या बैठी है स्विच ऑफ। देखो दोस्तों, कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लाओ। और ये गीत को गा रहे थे बलबीर सुमन जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से हास्य गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के।

बिल्कुल दोस्तों, कचरिया जू को ब्याह सब जुर्म लेने होते हैं। आइयो देखो दोस्तों, कितना प्यार जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे चंदन सिंह आरवानी जी। अब दोस्तों एक के संग हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के एक कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो गए है। सो हमें दो एक कार्यक्रम से जावे की अनुमति, और चलत चलत आप और लिख लो हमारे पते को और फोन नंबर को, जिसे कि आप और पते पे फोन नंबर पे कार्यक्रम के राय सुझाव पहुंचा सकें। सो दोस्तों हमारा फोन नंबर है 95 32 54 37 36, और हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। सो हमारी फोन नंबर पे और ई पते पे आप ई कार्यक्रम के राय सुझाव हम तक पहुंचा सकत। अब दोस्तों अपने दोस्त खुदो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में ई बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।